सुनो शारदा 90.8 FM। सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरो का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: ओशो, जिनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और रहस्यवादी थे। उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और सक्रिय ध्यान, जिसे कहा जाता है एक्टिव मेडिटेशन, उस पर जोर दिया। वे पारंपरिक धर्मों और रूढ़ियों के आलोचक थे और लोगों को आत्म जागरूकता, वर्तमान में जीने और निर्भीक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। ओशो के बारे में कुछ खास बातें। उनका प्रारंभिक जीवन। जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछ वाड़ा गांव में हुआ था। नाम उन्हें आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश और अंततः ओशो के नाम से जाना गया। शिक्षा और पेशा। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और जबलपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहे। दर्शन। ओशो ने जीवन को उत्सव की तरह जीने, पुरानी परंपराओं को छोड़ने और स्व अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया। वे ओशो निसर्गा और ओशो मेडिटेशन रिसोर्ट जैसे ध्यान केंद्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान विधियां। उन्होंने आधुनिक मनुष्यों के लिए डायनेमिक ध्यान यानी डायनेमिक मेडिटेशन जैसी सक्रिय ध्यान विधियां विकसित की, जो तनाव से मुक्ति में मदद करती हैं। साहित्य। उनके प्रवचनों को हजारों किताबों में संकलित किया गया है, जो हिंदी में भी व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति और किताबें जो बदल सकती हैं जीवन। ये है ओशो के बारे में, भगवान रजनीश के बारे में संक्षिप्त परिचय। आइए अब सुनते हैं भगवान रजनीश को, अर्थात ओशो को। Why do complications arise in human life? अर्थात मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं? इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं आप क्या कहते हैं।
1: भगवान, मैं आपको वर्षों से सुन रहा हूं, लंबे अरसे से मैं आपके पास हूं। मैंने समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, परोसी परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कहीं कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा, और उनके बावजूद आप मेरी दृष्टि में और मेरे हृदय में सदा सर्वदा एक और अखंड बने रहे। इस पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। मेरे पास दो ढंग से हो सकते हो, एक तो विचार से, बुद्धि से, और एक हृदय से और भाव से। बुद्धि और विचार से अगर मेरे पास हो तो बड़ी अड़चन होगी, रोज रोज विरोधी वक्तव्य होंगे, रोज रोज तुम्हें सुलझाना पड़ेगा, फिर भी तुम सुलझा ना पाओगे। बुद्धि कभी कुछ सुलझा ही नहीं पाती। जहां सीधी सीधी बात हो वहां भी बुद्धि उलझा लेती, तो मेरी बातें तो बड़ी उलझी। जहां सब साफ सुथरा हो वहां भी बुद्धि समस्याएं खड़ी कर लेती। तो मैं तो उन रास्तों की बात कर रहा हूं जो बड़े धुंधलके से भरे। एक ही रास्ते की बात हो तो भी बुद्धि विरोध खोज लेती। ये तो अनंत रास्तों की बातें, विरोध ही विरोध मिलेगा। ऐसा मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है जिसका हजार बार खंडन न किया हो। तो यदि बुद्धि से मेरे पास हो तो दो ही उपाय हैं, या तो तुम पागल हो जाओगे या बुद्धि को छोड़ दोगे या भाग जाओगे। बुद्धि को बचानी है तो मुझे छोड़ना पड़े, मुझे बचाना है तो बुद्धि छोड़नी पड़े। और कोई सौदा और कोई समझौता नहीं हो सकता। इसलिए बहुत से बुद्धिवादी मेरे पास आते हैं, हट जाते हैं। उनको अपनी बुद्धि ज्यादा मूल्यवान मालूम होती है, वो उनका निर्णय। उन्हें मैं बहुत बुद्धिमान नहीं कहता, क्योंकि वे उसी बुद्धि को पकड़ रहे हैं जिस बुद्धि से कुछ भी नहीं पाया। इधर मैंने एक मौका दिया था निर्बुद्धि होने का, एक द्वार खोला था, अनजान अपरिचित, हिम्मत होती और दो कदम चल लेते तो कुछ पा जाते, कोई झलक मिलती, कोई जीवन का स्वाद उतरता। लेकिन घबरा के उन्होंने अपनी बुद्धि की पोटली बांध ली, भाग खड़े हुए। उसी को बचा लिया जिसके सहारे कुछ भी नहीं पाया था। इसलिए मैं उन्हें बहुत बुद्धिमान नहीं कहता। जो सच में बुद्धिमान है उन्हें मेरी बातों में विरोधाभास दिखाई पड़ेंगे, तो भी मेरी बातों का रस विरोधाभासों के बावजूद उनके हृदय को आंदोलित करता रहेगा। एक ना एक दिन हिम्मत करके वे अंधेरे में मेरे साथ कदम उठा के देखेंगे। उसी दिन उनके भीतर क्रांति हो जाएगी, उनकी चेतना की धारा बुद्धि से छिटक के हृदय के मार्ग पर बहने लगेगी। वही एकमात्र क्रांति है। तो जो बुद्धि से मेरे पास आए हैं, या तो रुकना है तो बुद्धि खोनी पड़ेगी। वही मूल्य चुकाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि बचानी है तो मुझे खोना पड़ेगा, फिर तुम्हारी मर्जी। दूसरा जो वर्ग है, जो हृदय के कारण मेरे पास आया है, जो मुझे सुनकर नहीं, मुझे सोचकर नहीं, मुझे देखकर, मुझे अनुभव कर मेरे पास आया है, जिसने धीरे धीरे मेरे साथ एक प्रेम का नाता बनाया है, वो नाता बौद्धिक नहीं। उस नाते में मैं क्या कहता हूं कुछ लेना देना नहीं, मेरी मान्यताएं क्या हैं उनका कोई विचार नहीं, मैं क्या हूं वही मूल्यवान है। उनके ऊपर मैं कितने ही विरोधी वक्तव्य देता चला जाऊं कोई अंतर न पड़ेगा। उन्होंने अपने भीतर से जो मेरा साथ जोड़ा है वो अविरोध का है, हृदय का है। बुद्धि सोचती है कौन सी बात ठीक कौन सी बात गलत, बुद्धि सोचती है कौन सी बात किस बात के विपरीत पड़ रही है, बुद्धि सोचती है कल मैंने क्या कहा था आज मैं क्या कह रहा हूं। बुद्धि हिसाब रखती है। हृदय तो क्षण क्षण जीता है, अतीत को जोड़ के नहीं चलता। मैंने कल क्या कहा था उससे प्रयोजन नहीं, मैं कल क्या था उससे प्रयोजन, और जो मैं कल था वही मैं आज हूं। मेरे वक्तव्य बदलते जाएं, मेरे शब्द बदलते जाएं, मेरा शून्य वही का वही है। कभी मैंने तुमसे मंदिर में जाके प्रार्थना करने को कहा है, कभी सब मूर्तियों को छोड़कर त्याग कर मस्जिद में नमाज पढ़ने को कहा है, कभी भगवान के रस में डूबकर नाचने को कहा है, मदमस्त होने को कहा है, कभी भगवान है ही नहीं सब सहारे छोड़ देने को, आत्मखोज के लिए कहा है। स्वभावतः ये वक्तव्य विरोधी है, लेकिन इन सब विरोधों के भीतर मैं हूं। जिसने तुमसे पूजा के लिए कहा था उसी ने तुमसे पूजा छोड़ने को कहा है, और जिसलिए तुमसे पूजा करने को कहा था उसी लिए तुमको पूजा छोड़ने को कहा है। मैं वही हूं और मेरा प्रयोजन वही है। अगर तुमने प्रेम से मुझसे संबंध जोड़ा तो तुम देख पाओगे, तुम्हें यह स्पष्ट होगा, तब तुम जन्मों जन्मों मेरे साथ रहो और तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न ना उठेगा। ये शुभ है, ये महिमापूर्ण है। प्रेम ने कभी कोई प्रश्न जाना ही नहीं। हाँ, कभी जिज्ञासा उठ सकती है, जिज्ञासा बड़ी और बात है। इस फर्क को भी ख्याल में ले लेना चाहिए। प्रश्न तो उठता है तुम्हारी जानकारी से, तुम कुछ जानते हो उससे प्रश्न खड़ा होता है। जिज्ञासा उठती है अज्ञान से, तुम नहीं जानते इसलिए प्रश्न खड़ा होता है। तुमने वेद पढ़ा, फिर मैंने कुछ कहा, और अगर तुमने जो वेद में पढ़ा है उसके विपरीत पढ़ा तो प्रश्न उठेगा। तुमने गीता पढ़ी और मैंने कुछ कहा, और तुम्हारी पढ़ी गई गीता से मेल न खाया तो प्रश्न उठेगा। प्रश्न तुम्हारे ज्ञान से उठता है, तुम्हारी सूचना से, जानकारी से उठता है। प्रश्न का केवल इतना अर्थ है कि तुम्हारा ज्ञान डगमगाया, तुम उसे स्थिर करना चाहते हो, तुम बेचैनी में पड़ गए, असुरक्षित हो गए। सब साफ सुथरा मालूम होता था, भ्रम खड़ा हो गया। मैंने कुछ कहा, उसने तुम्हें डमाडोल किया। तुम स्थिर होना चाहते हो, तुम प्रश्न पूछते हो इस पार या उस पार। या तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही गलत सिद्ध कर दूं ताकि तुम मुझे ठीक मान लो, और या मैं गलत सिद्ध हो जाऊं ताकि तुम अपनी ठीक को ठीक माने चले जाओ। प्रश्न तुम्हारे ज्ञान में बाधा पड़ने से उत्पन्न होता है। जिज्ञासा अज्ञान से पैदा होती। छोटा बच्चा पूछता है तब जिज्ञासा है, उसे कुछ पता नहीं। वो पूछता है संसार को किसने बनाया। एक हिंदू पूछता है संसार को किसने बनाया, वो जान के ही पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि मैं तो मानता हूं कि ईश्वर ने बनाया, तुम भी मानते हो या नहीं, किसने बनाया संसार को। उसके प्रश्न के पीछे जानकारी खड़ी है। एक छोटा बच्चा पूछता है किसने बनाया, उसके प्रश्न के पीछे कोई जानकारी नहीं है, विराट जिज्ञासा है। वो कुछ मान के नहीं पूछ रहा है, इसलिए उसके पूछने में एक निर्दोष भाव है। वो जानना चाहता है इसलिए पूछ रहा है। तुम जानते ही हो इसलिए पूछते हो। तो तुम जब भी पूछते हो तुम्हारा प्रश्न एक तरह का विवाद है। जिन्होंने मुझसे प्रेम किया है उनके प्रश्न तो नहीं उठेंगे, जिज्ञासाएं होंगी। जिज्ञासा सत्य की खोज पर बड़ी जरूरी है। प्रश्न विवाद करना हो, शास्त्रार्थ करना हो तो काम के, सत्य को खोजना हो तो बाधाएं। पूछा है, वर्षों से आपको सुन रहा हूं, लंबे अरसे से आपके पास हूं, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा। तुम जितनी ज्यादा देर मेरे पास रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे। ये कुछ प्रेम ऐसा है कि बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं। जो घट जाए वो भी कोई प्रेम। ये चांद कुछ ऐसा है कि बढ़ता ही चला जाता है। पूर्णिमा कभी आती नहीं, बस आती मालूम होती। प्रेम के रास्ते की यही खूबी है, पांव बढ़ते लक्ष्य उनके साथ बढ़ता, पांव बढ़ते लक्ष्य उनके साथ बढ़ता, और पल को भी नहीं यह क्रम ठहरता। पांव मंजिल पर नहीं पड़ता किसी का, प्यार से प्रिय जी नहीं भरता किसी का। जिससे जी भर जाए वो प्रेम नहीं, जिससे जी भरे ही ना वही प्रेम है। भर भर के ना भरे, बार बार तुम लगो कि अब लबालब हुए, अब लबालब हुए, जब झांको तब पांव की अभी और जगह रह गई, अभी और भरना है। मंजिल सदा पास आती लगती है, हाथ बढ़ाया मिल जाएगी, पर पांव मंजिल पर कभी नहीं पड़ता। तुम जितनी ज्यादा देर मेरे पास रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे। समय सिकुड़ता जाएगा। प्रेम के सामने समय छोटा है, समय कैसे बीत जाता है प्रेम की घड़ी में पता नहीं चलता। तुमने कभी ख्याल किया, तुम प्रेमी के पास बैठे हो, घंटों बीत जाते हैं, ऐसा लगता है पल ही बीते, और तुम किसी दुश्मन के पास बैठे हो, पल बीतते हैं और ऐसा लगता है घड़ी मानो ठहर गई, घंटों बीत गए। दुख में समय लंबा हो जाता है, सुख में समय छोटा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं नरक अनंत है, दुख में समय लंबा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं स्वर्ग क्षणभंगुर है, सुख में समय छोटा हो जाता है, आया नहीं गया नहीं। और आनंद में तो समय परिपूर्ण शून्य हो जाता है, इसलिए आनंद को कालातीत कहा है। फिर से तुम सोचना कितने समय तुम मेरे पास रहे, बहुत थोड़ा मालूम पड़ेगा। अगर गौर से देखोगे तो शायद तिरोहित ही हो जाएगा कि रहे ही कहां, अभी आए थे, क्षण भी नहीं बीता, या क्षण कहना भी ठीक नहीं, कुछ बीतता नहीं मालूम पड़ता, कुछ ठहरा हुआ मालूम पड़ता है। इसलिए तुम जितनी ज्यादा देर रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे कम रहे कम रहे। ये जल कुछ ऐसा है कि पीने से प्यास बढ़ती, जिस प्रेम से प्यास बुझ जाए वो प्रेम नहीं, जिस प्रेम से प्यास अनंत होकर जलने लगे, प्रखर होकर जलने लगे, वही प्रेम प्रेम है, और वही प्रेम प्रार्थना बनेगा, और वही प्रेम तुम्हें एक दिन परमात्मा तक ले जाएगा। प्यास जब ऐसी हो जाए कि तुम मिट ही जाओ और प्यास ही बचे, बस प्यास बचे, तुम न बचो, एक व्याकुलता बचे, एक विरह बचे, एक उत्तप्त अभीप्सा बचे, तुम खो ही जाओ, प्यासा बचे ही ना, क्योंकि प्यासे के कारण भी प्यास पूरी नहीं हो पाती। कुछ शक्ति प्यासे को मिलती, कुछ प्यास को मिलती, बट जाती। जब प्यास ही प्यास होती है और प्यासे के पास अपने को बचाने की शक्ति भी नहीं बचती, तभी प्यास प्रार्थना हो जाती, तभी प्यास परमात्मा हो जाती। यहां तुम्हें मैं प्यास ही सिखा रहा हूं, यहां तुम्हें मैं इस बात के लिए तैयार कर रहा हूं ताकि तुम अनंत प्यास के मालिक हो जाओ। भरने की जल्दी थोड़ा सोचो, साधारण प्यास को आदमी मिटा लेना चाहता है क्योंकि प्यास से पीड़ित है, परमात्मा की प्यास को मिटा थोड़ी लेना चाहता है क्योंकि प्यास से पीड़ित थोड़ी है। इसलिए नारद कहते हैं विरहा आसक्ति, विरह में भी आसक्ति हो जाती, रस आने लगता है प्यास में भी। अगर तुम ठीक से समझो तो ऐसा कहने दो मुझे कि प्यास के कारण थोड़ी भक्त परमात्मा को मांगता है, परमात्मा को मांगता है ताकि प्यास बढ़ती जाए। परमात्मा प्यास से गौण हो जाए, भक्ति भगवान से महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि जब तक भक्ति साधन है तब तक तो तुम छुटकारा चाहोगे कि जल्दी पूरा हो, रास्ता पूरा हो, मंजिल आए। जब भक्ति साध्य हो जाती, यहां तुम्हें मैं ऐसी ही प्यास की तरफ ले चला हूं। तो कितना समय तुम रहे ये बात बड़ी सोच लेने जैसी है, ज्यादा समय रहे नहीं। ये प्रश्न पूछा है आनंद त्रिवेदी ने, माना बहुत वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं अभी क्षण भी कहां बीते, अभी अभी आए थे, अभी बैठे ही हो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई। और तुम विचारोगे तो ऐसा ही पाओगे, अगर ज्यादा देर हो गई तो उठने का वक्त करीब आ गया, जब ज्यादा देर होने लगी तो आदमी उठने की तैयारी करने लगता है। तुम और भी बैठे रहना चाहते हो, तुम रुके ही रहना चाहते हो। जब तक उठने की आकांक्षा खड़ी ना हो जाए, जब तक यहां से दूर जाने की आकांक्षा ना हो जाए, तब तक कहां देर हुई। अभी तुम उबे नहीं, बुद्धि जल्दी उब जाती। बुद्धि बड़ी छिछली है, उसमें कोई गहराई नहीं। शोरगुल बहुत है, जैसा उथली नदियों में होता है। हृदय कभी उबता नहीं, बड़ा गहरा है, पता भी नहीं चलता कि बह रहा है कि नहीं बह रहा है। धार बड़ी धीमी सरकती। पूछा है मैंने समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कभी कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा। शुभ है, सौभाग्यशाली हो, बड़ा मंगल सूचक है। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होता सभी को, दुर्भाग्य। जिसको होता है आनंदित हो। इसका अर्थ हुआ कि एक बड़ी गहरी उपलब्धि तुम्हें हो रही, जो वक्तव्यों से नहीं डिगाई जा सकती। मैं क्या कहता हूं इसकी तुम्हें अब चिंता नहीं है। तुम्हारे सामने मैं क्या हूं यह प्रकट होने लगा। मैं कौन किन शब्दों का उपयोग करता हूं बहुत फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे शब्दों में झांक के मेरे शून्य को देखने लगे। मैं परमात्मा के संबंध में कुछ कहूं, परमात्मा के खिलाफ कहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों के पार मुझे खड़ा हुआ अनुभव कर लेते हो। तुम मेरे गीत की धुन को पहचानने लगे। मैं किस भाषा में गाता हूं कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हें भाषा समझ में आती है नहीं आती कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम मेरे गीत की धुन से राजी होने लगे, तुम्हारी लयबद्धता बंधने लगी। न फलसफी न मुल्ला से गरज है मुझको, यह दिल की मौत वो अंदेशा और नजर का फसाद। पंडित है, मौलवी है, दार्शनिक है, विचारक है, उससे क्या लेना देना, क्योंकि यहां तो मरने की कला सिखाई जा रही और वो तो सिर्फ दृष्टि मत विचार का उपद्रव है। पंडित तो केवल शब्दों का जाल है। न फलसफी न मुल्ला से गरज है मुझको, यह दिल की मौत, धर्म तो दिल की मौत है, यहां तो मिटना है वो अंदेशा और नजर का फसाद, और वहां तो केवल दृष्टिकोण नजरिए के झगड़े। यहां तुम्हें कोई झगड़ा थोड़ी सिखा रहा हूं, यहां तो झगड़ने वाले को कैसे विसर्जित कर दो यही सिखा रहा हूं। यहां झगड़ा करने वाला कैसे विसर्जित हो जाए, अहंकार कैसे डूब जाए, बस उतनी ही बात है। और इसलिए तो सब चिकित्साओं की बात करता हूं, जिससे हो जाए चलेगा। चिकित्सा से मेरा मोह नहीं है, इसे तुम समझ लो। तुम्हारी बीमारी मिटनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी मिटाने की उतनी चिंता नहीं, चिकित्सा से मोह है। मेरे एक मित्र हैं, वो होम्योपैथ, होम्योपैथी के दीवाने, एलोपैथी के दुश्मन। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस घर में बीमार होना मुश्किल है, क्योंकि बीमार हुए कि होम्योपैथी, कोई ठीक होता नहीं दिखाई पड़ता, मगर इनकी जिद है, और एलोपैथी डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते। तो अपने पति से यह कहना भी संभव नहीं कि सिर में दर्द है या बुखार है, यह भी चोरी छिपे छिपाना पड़ता है, नहीं तो होम्योपैथी शुरू। मरीज से मतलब नहीं है, सिद्धांत कुछ हैं जो नेचुरोपैथी के दीवाने, उन्हें कोई फिक्र नहीं। मेरे एक रिश्तेदार, उनकी पत्नी मर गई, नेचुरोपैथी में पूरे समय में मौजूद था जब ये घटना घटी। उनको कई बार समझाया कि तुम इस पत्नी को मारे डाल रहे हो, उपवास, वो कमजोर बीमार, उसको वो उपवास करवा रहे। सो मैंने कहा उपवास कभी ठीक भी हो सकता है लेकिन इसकी हालत खराब है। पर वो बोले कि हालत इसीलिए खराब है कि शरीर में विषाक्त द्रव्य हो गए, टॉक्सिक, उनको निकालना पड़ेगा, उपवास से ही निकल सकते हैं। और एलोपैथी की दवा तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि उसमें तो और जहर है। सिद्धांत मजबूत, पत्नी सूखती गई। इधर मैं उनसे कहता भी कि पत्नी सूखती जा रही है, हालत उसकी खराब होती जा रही है, पर वो कहते कि जरा देखो तो उसके चेहरे पे कैसी कांति, वो पीली पड़ रही, वो उसको कांति कहते। ऐसा ही तो साधु सन्यासियों के पास लोग जुड़े रहते, उनका चेहरा पीला पड़ता जाता है और भक्त कहते हैं कैसा स्वर्ण जैसा तपश्चर्या प्रकट हो रही। दूसरा देखेगा तो उनको बीमार पाएगा, इलाज की जरूरत है। भक्त देखता तो वो कहता कैसा शुद्ध कुंदन जैसा चेहरा निकला आ रहा है, स्वर्ण प्रकट हो रहा है। नजरों में सिद्धांत छाए हो तो पीतल सोना मालूम होता है। मैंने उनसे कहा ये पत्नी मर जाएगी, न केवल उसका शरीर कमजोर हुआ, उसकी नींद भी खो गई, क्योंकि भोजन की थोड़ी मात्रा नींद के लिए जरूरी है। जब शरीर में कुछ पचाने को ना हो तो शरीर को सोने की जरूरत नहीं रह जाती। जब नींद खो गई, मैंने उनसे कहा इसकी नींद खो गई, वो कहने लगे कि ये तो हो जाता है जब आदमी शांत हो जाता है, तो ऐसा तो गीता में ही कहा है कृष्ण ने, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयम। ये पत्नी संयम को उपलब्ध हो रही, उनको समझाना मुश्किल था। फिर पत्नी पागल भी हुई मगर वो अपनी बकवास जारी रखे। पत्नी मर भी गई लेकिन सवाल सिद्धांत का था। ध्यान रखना ऐसा ही धर्मों के जगत में चलता है। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है कि परमात्मा मिले या ना। अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान के आश्रय ही मिलना चाहिए, कुरान ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर तुम हिंदू हो तो गीता के सहारे ही मिलना चाहिए, गीता ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर परमात्मा तुमसे कहता हो कि आज मैं कुरान के द्वारा भी मिलने को तैयार हूं तो तुम कहोगे हम मिलने को तैयार नहीं, हम तो गीता के सहारे ही आएंगे। कहते हैं तुलसीदास कृष्ण के मंदिर में गए वृंदावन तो उन्होंने कहा कि झुकूंगा नहीं, जब तक धनुष्वाण हाथ ना लोगे। कृष्ण की मूर्ति थी बांसुरी लिए, अब तुलसीदास झुक सकते कहीं कृष्ण की मूर्ति के सामने बांसुरी लिए? वो तो धनुर्धारी राम के भक्त है। जब तक धनुष्वाण हाथ ना लोगे झुकूंगा नहीं, ये बात कैसी हुई? परमात्मा से कोई प्रयोजन नहीं है, तुम परमात्मा को भी अपने अनुशासन में रखना चाहते हो। तुम्हारे ढंग से आए तो झुकोगे, इसका अर्थ हुआ तुम अपने ढंग के लिए झुकोगे, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। तुम परमात्मा से कवायद करवाने को उत्सुक हो। ये कैसा अहंकार? नहीं, बुद्धि विवादी है, झगड़ेल है। यहां मैं सभी रास्तों की बातें कर रहा हूं क्योंकि मैं कहता हूं चलो गीता से न मिले छोड़ो भी, गीता से क्या लेना देना है? आम खाने से मतलब गुठलियां गिनने से क्या प्रयोजन? गीता से नहीं मिले जाने दो, धम्मपद से ही चलो, धम्मपद से खोज ले। अगर होम्योपैथी काम ना आई तो एलोपैथी सही, एलोपैथी काम ना आई तो नेचुरोपैथी सही। पैथी से बंधने की जरूरत क्या है? जो पैथी से बंध गया वो तो रोगी से भी महारोगी है। एक तो बीमारी पकड़े और अब चिकित्सा ने भी पकड़ा। सभी रास्तों से लोग पहुंचे। मैं तुमसे सभी रास्तों की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम सभी रास्तों पर चलो, मैं कहता हूं जब तुम्हें जो रास्ता जम जाए तुम उस पर चल पड़ना। जिनके लिए तब तक न जमा होगा उनके लिए मैं आगे बोलता चला जाऊंगा। इसलिए तुम्हें मेरे वक्तव्यों में विरोध दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैं इतने विरोधी लोगों पर बोल रहा हूं, उनकी अभिव्यक्तियां इतनी भिन्न हैं। कहां बुद्ध, कहां क्राइस्ट, कहां कृष्ण, कहां महावीर, कहां पतंजलि, कहां तिलोपा, कहां शिव का विज्ञान भैरव, कहां लाओसू का ताओ ते किंग। इतने भिन्न लोग हैं, इतनी भिन्न सदियां, इतनी भिन्न अभिव्यक्तियां, लेकिन मेरी सारी चेष्टा तुम्हें बताने की यह है कि सबके भीतर एक की तरफ ही इशारे हैं, अंगुलियां अलग अलग, चांद एक है। तो जब मैं लाओसी की उंगली पकड़ के उठाऊंगा चांद की तरफ, तो स्वभावतः वह उंगली वैसी ही नहीं होगी जैसी बुद्ध की उंगली होगी, हो ही नहीं सकती। बुद्ध की उंगली बुद्ध की उंगली है, लाओसी की उंगली लाओसी की उंगली है। तुम अगर गौर से मुझे देखते रहे तो तुम धीरे धीरे पाओगे कि उंगलियों का प्रयोजन ही नहीं है। उंगलियां किस तरफ उठाई जा रही हैं, चांद की तरफ, उस तरफ देखो, उंगलियों को भूलो। अगर तुमने चांद देखा तो मेरे वक्तव्यों में तुम्हें एक धारा बहती हुई प्रवाहित मालूम होगी, अगर उंगलियां देखी तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, तो मेरे वक्तव्य तुम्हें अलग अलग मालूम होंगे। चांद को देखना हो तो तुम्हें मुझे बड़ी प्रेम की नजर से देखना होगा। विवाद की नजर लेके तुम आए तो शब्द दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि विवाद शब्द को भी पकड़ ले तो बहुत, शब्द भी छूट जाता है। विवादी का मन इतना आतुर होता है विवाद के लिए कि वो शब्दों को भी नहीं पकड़ पाता है। उनको पकड़ लेता है जिनको विवाद के काम ला सकता है, उनको छोड़ देता है जो उसके काम के नहीं। जिनसे विवाद खड़ा हो सकता है उनको पकड़ लेता है, जिनसे खड़ा नहीं हो सकता उनको भूल ही जाता है। लेकिन अगर तुमने प्रेम से मुझे सुना, जो कि जीवन को देखने का अलग ही अनूठा ही ढंग है, अगर तुमने प्रेम से मुझे सुना तो तुम मेरे सारे विरोधों में एक ही संगीत को प्रवाहित होते हुए देखोगे। नदियां चाहे पूरब की तरफ जा रही हों चाहे पश्चिम की तरफ, सब सागर की तरफ जा रही हों। कुछ नजर आता नहीं उसके तस्वर के सिवा, हसरते दीदार ने आंखों को अंधा कर दिया। प्रेम के लिए जो आंख है, बुद्धि के लिए वही अंधापन मालूम होता है। इसलिए बुद्धिमान सदा प्रेम को अंधा कहते रहे। तुम प्रेमी से पूछो, प्रेमी बुद्धिमानों को अंधा मानता है, क्योंकि प्रेमी कुछ ऐसा देख लेता है जो बुद्धि देख ही नहीं पाती। कल एक युवा सन्यासी ने मुझसे पूछा कि जब से ध्यान कर रहा हूं तब से कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, अनुभव आती हैं, कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैंने कल्पना तो नहीं कर ली। फूल ज्यादा रंगीन दिखाई पड़ते हैं, कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूं। वृक्ष ज्यादा हरे मालूम पड़ते हैं, ताजे और नहाए मालूम पड़ते हैं, कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वृक्ष तो ये वही है, न इन्होंने कोई स्नान किया है न कोई ताजगी आ गई। उस युवक की चिंता स्वाभाविक है, भीतर मन साफ हो रहा है तो बाहर भी चीजें साफ होने लगी। मैंने कहा घबराना मत, अगर डर गए और ऐसा सोच लिया और मान ली बुद्धि की बात की ये तो कल्पना का जाल है, तुमने सपने देखने शुरू कर दिए, तो जो द्वार खुलता था, जो पर्दा हटता था, रुक जाएगा। ये तो बुद्धि ने सदा ही कहा है। एक कवि को फूल में उतना दिखाई पड़ता है जितना किसी को दिखाई नहीं पड़ता। एक छोटे बच्चे को सागर के तट पर कंकड़ पत्थर में सीपी शंख में इतना दिखाई पड़ता है जितना किसी को दिखाई नहीं पड़ता। कंकड़ पत्थर भर लेता है खीसे में जो भी

ताजी ताजी है, अभी अभी परमात्मा के घर से आया है, अभी नजर साफ है, अभी धूल नहीं जमी, अभी अनुभव का कचरा इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन जल्दी ही बड़े बूढ़े इसे समझा देंगे कि कंकड़ पत्थर हैं, छोड़ो, और दूसरे कंकड़ पत्थरों की दौड़ पर लगा देंगे जिनमें उनको मूल्य दिखाई पड़ता है। जब तुम फिर से प्रेम में पड़ते हो तो फिर तुम्हें बच्चे की आंख मिलती, जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम्हें कवि की आंख उपलब्ध होती, तुम्हें रहस्यवादी संत की आंख उपलब्ध होती। तो अगर तुम मेरे प्रेम में हो तो ही मेरे पास भी हो, ध्यान रखना, अन्यथा पास आके भी कोई पास आ पाता है। शारीरिक निकटता किसी को पास थोड़ी लाती, एक आत्मिक निकटता। फिर तुम हजारों मील दूर भी रहो तो भी पास हो, विचार बीच में ना हो तो तुम पास हो, विचार बीच में हो तो तुम पास हो के भी दूर हो, और विचार बीच में ना हो तो प्रेम बहता है। विचार पत्थर की तरह रोके हुए है प्रेम को, जहां प्रेम बहता है वहां तुम्हें कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी जो प्रेम से खाली आंखों को दिखाई नहीं पड़ेंगी, और प्रेम से खाली आंखें तुम्हें अंधा कहेंगी। तुम उससे बेचैन मत होना, उनके लिए ये वक्तव्य स्वाभाविक है। बुद्धिमान तुम्हें पागल कहेंगे, सदा से उन्होंने कहा है। जब बुद्ध के पास लोग आके हजारों की संख्या में संन्यास्त होने लगे तो लोगों ने कहा पागल हो गए, इस आदमी ने लोगों को पागल किया, ये क्या है, सम्मोहित हो गए। जब महावीर के पास लोग आके संन्यास्त हुए और उन्होंने जीवन का नया ढंग लिया, नई चाल सीखी, तो लोगों ने फिर कहा कि पागल हुए। ये संसार सदा से ही, जो भीड़ का रास्ता है उससे अन्यथा जाने वालों को पागल कहता रहा है। अगर तुम में हिम्मत हो मेरे साथ चलने की तो तुम्हें यह भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि लोग जब पागल कहें तो हंस लेना, और जब लोग पागल कहें तो क्रोध मत करना, स्वाभाविक है। वे तुम्हें पागल नहीं कह रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि अगर तुम ठीक हो तो फिर हम पागल हैं क्या। वो सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे हैं, तुम उन पर नाराज मत होना। अगर तुम नाराज हुए तो तुम उनके विचार को मजबूत कर दोगे कि निश्चित ही तुम पागल हो गए हो। तुम नाराज मत होना, तुम हंसना, तुम उन्हें विभूचन में डाल देना, तुम मुस्कुराना, तुम कहना कि ठीक कहते हो, पागल हो गए हैं लेकिन पहले से भले हो गए और पहले से ज्यादा मजे में हो गए, मगर पागल हो गए हैं ये सच है। तुम्हारे पागलपन को उनके प्रति करुणा बनने देना, क्योंकि वे परेशान हैं अपने पागलपन से, वे भी चाहते हैं कि छूट निकले, कहीं कोई द्वार दरवाजा मिले, वे कारागृह में बंद हैं। अगर तुम्हें आनंदित देखा, शांत देखा, तो तुम उन्हें भी खींच लाओगे। अगर तुम क्रोधित हुए, अगर तुम अपनी आत्मरक्षा करने लगे, तुमने कहा कि मैं पागल नहीं, अगर तुम विवाद में पड़े तो तुम उनके लिए द्वार बंद कर दोगे। यही तो वे चाहते थे कि तुम विवाद में उतर आओ। तुम मुस्कुराना, तुम उन्हें आशीर्वाद दे देना, उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करना, एक फूल उनको भेंट कराना और लौट आना। तुम कोई विवाद मत करना, तो तुम उनके लिए भी रास्ता खुला रखोगे। आज नहीं कल वे भी आ सकते हैं, उनकी भी संभावना उतनी ही महान है जितनी तुम्हारी। समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कहीं कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा, और उनके बावजूद आप मेरी दृष्टि में, हृदय में सदा सर्वदा एक और अखंड बने रहे। उन विरोधी वक्तव्यों के बावजूद अगर तुम्हारे हृदय में बना रहा तो ही बने रहने में कुछ सार है। अगर मैं तुम्हें तर्कयुक्त लगूं, तुम्हारे बंधे बंधाए तर्क की सीमा में बंधा हुआ लगूं, फिर तुम मुझसे

0: राजी हो जाओ तो वो दोस्ती कुछ बहुत गहरी नहीं, वो केवल विचार का नाता है। वो नाता कभी भी टूट सकता है, मेरे विचार बदल जाएं या तुम्हारे बदल जाएं, वो टूट जाएगा। और विचार तो रोज बदलते रहते हैं, विचार का कोई भरोसा? विचार पे भरोसा तो ऐसे है जैसे कुछ न किसी ने सागर की लहरों पर भवन बनाने की आकांक्षा की। विचार तो बड़े चंचल है। मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी न किसी का। अभी सुबह का, अभी शाम का, अभी रुदन का, अभी हंसी का। मन तो मौसम सा चंचल है। मन के सहारे अगर तुम मेरे साथ रहे तो ज्यादा देर चलना ना होगा। ये दोस्ती थोड़ी देर की रहेगी, रास्ते पर दो राहगीर मिल गए, फिर मेरा रास्ता अलग हो गया, फिर तुम्हारा रास्ता अलग हो गया। मिले थोड़ी दूर को साथ चल लिए, फिर बिछुड़ गए। प्रेम ऐसी कुछ बुनियाद है कि शाश्वत हो सकता है, मृत्यु भी उसे मिटाती नहीं। जीवन तो उसे डगमगा ही नहीं सकता, मौत भी उसे नहीं डगमगा पाती। बुद्ध की मृत्यु करीब आई, उन्होंने घोषणा कर दी कि आज वे विदा हो जाएंगे शरीर से। आनंद बहुत रोने चीखने लगा, लेकिन वो चकित हुआ कि बुद्ध का एक जो दूसरा शिष्य सुभूति एक वृक्ष के नीचे शांत बैठा है। आनंद ने उससे कहा, तुम्हें खबर नहीं मिली, किसी ने बताया नहीं, भगवान आज देह छोड़ देंगे। तुम रो नहीं रहे, तुम होश में हो, तुम्हारी आंखें गीली नहीं, फिर कभी मिलन ना होगा, फिर कभी उनके ये सद्वचन सुनने को ना मिलेंगे, फिर कौन सिखाएगा ये सद्धर्म? सास्तक खोया जाता है। सुभूति ने कहा, जिस सास्ता से मेरा संबंध है उसके खोने का कोई उपाय नहीं, जिससे मेरा संबंध है उसकी मौत नहीं हो सकती। वो फिक्र मैंने पहले ही कर ली है आनंद, तूने कुछ गलत से संबंध बना लिया। विचार से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मेरा संबंध गहरा है विचार से। हम साथ ही हैं, अब हम अलग नहीं हो सकते, अलग होने का कोई उपाय नहीं। आनंद ने बुद्ध को आके कहा, बुद्ध ने कहा, सुभूति ठीक कहता है आनंद। आनंद ने कहा, मैं 40 वर्ष आपके पास रहा और मैं आपके पास ना हो पाया, क्या बाधा है? तो बुद्ध ने कहा, तू ज्यादा सोच विचार करता है, तेरा मुझसे संबंध विचार का है, तू अभी भी ध्यान में मुझसे ना जुड़ा। ये ध्यान बुद्ध का शब्द है प्रेम के लिए, कहो ध्यान कहो प्रेम।
1: अभी आप सुन रहे थे ओशो की विचार, विषय था Why do complications arise in human life? मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं? आशा करता हूँ इन विचारों को बहुत ही ध्यान से आपने सुना होगा। ओशो कहते हैं अतीत से मुक्ति, अर्थात हर कोई अपने भीतर किसी दर्द, स्मृति या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है। जीवित बुद्ध, अर्थात जीवित बुद्ध हमारे बस में नहीं होते, उनके साथ तो अगर मैत्री बनानी हो तो तुम्हें उनके बस में होना पड़ता है। स्वतंत्रता, अर्थात फ्रीडम, तुम जो भी अर्थ निकालना चाहो निकाल सकते हो, अर्थ तुम्हारे होंगे। ओशो के विचारों को आज भी ध्यान, आत्मविकास और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए प्रासंगिक माना जाता है। ऐसे विचारों को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: सुनो शारदा 90.8 FM। हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
3: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 FM से मैं हूं गगन आपके साथ। आज क्या है, आज हमारे साथ कौन खास जुड़ रहे हैं, कौन मेहमान है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकारिता जगत से, आप पत्रकार हैं, अतुल शाह जी आपका नाम है और बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। इनसे हम जानेंगे इनके अनुभव के बारे में, इनकी इस यात्रा के बारे में और आज के समय में पत्रकारिता का क्या रूप है और आप क्या सोचते हैं आज के पत्रकारों के बारे में। ये सारी बातें होने वाली हैं आज के हमारे खास मेहमान जो कि अतुल शाह जी हैं, जर्नलिस्ट हैं और बहुत कुछ जानेंगे। तो वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो आप कहीं जाएगा मत, जुड़े रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम है। हुनाचीज हर दिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। बहुत कुछ खास होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। पहले लिंक में हमने आपको बातें बताई कि आज हमारे साथ कौन खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार पुनः बता देता हूं, आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि पत्रकारिता जगत में काफी लंबा चौड़ा अनुभव है। 20 से 25 साल आपने पत्रकारिता जगत को दिए हैं। आपका नाम है अतुल शाह जी, और कहते हैं इनका इस्तकबाल करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि चार स्तंभ की बात होती है। पहली है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका, तीसरी है
1: न्यायपालिका
0: और चौथी है पत्रकारिता। ये छोटी सी आवाज आपने सुनी तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल शाह जी। तो शाह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया है और मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए बहुत ही रोचक यात्रा होगी।
0: बेशक बेशक सर, हमें बड़ी खुशी है आपसे बात करके खुद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चाएं होने वाली है, आपके अनुभव के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले सर, जब मैं अनुभव का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ तो पत्रकारिता जगत में आपने 25 साल, जैसे आपने हमें बताया 25 साल का जो अनुभव है वाकई बहुत बड़ा अनुभव है, तो ये जो यात्रा अब तक रही है कैसी रही आपकी?
2: बहुत ही शानदार यात्रा रही है, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैंने 1997 से दैनिक जागरण से अपना पत्रकारिता का सफर शुरू किया, जो अनवरत 2021 तक जारी रहा,
0: सिर्फ एक संस्थान के साथ
2: जुड़ा रहा। और इसका एक खास कारण भी है कि बनारस में जो हमारे मुख्य संपादक हैं और दैनिक जागरण के निदेशक भी रहे हैं वीरेंद्र कुमार जी, तो जब मैं अपने संस्थान में ब्यूरो चीफ था, मुझे किसी एक जगह पर एक पत्रकार की नियुक्ति करनी थी। मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आई थी, उसमें एक एप्लीकेशन थी जो मुझे सबसे ज्यादा अपील कर रही थी, और उन सज्जन ने 7-8 जगह काम किया था 10 सालों में। मैं बहुत ही उत्साहित होकर जब अपने निदेशक जी के पास गया और उनको बताया कि ये एप्लीकेशन आई है, किंतु मैं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ और इन्हें मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने उस एप्लीकेशन को देखा और मुस्कुराए, बोले जब ये 7 जगह नहीं टिका तो तुम्हारे पास क्या टिकेगा।
0: जी
2: तो मुझे समझ में आया, टिकना भी जरूरी है, स्थायित्व से ही आपको जो है पहचान मिलती है। और निसंदेह हिंदी की पत्रकारिता में दैनिक जागरण नंबर 1 रहा है, तो उस मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था कि मैं किसी नंबर 2 अखबार में जाऊं। और मेरी बहुत ही मनमोहक यात्रा रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है
0: जी,
2: और समाज को जानने को मिला है, और मैं बहुत खुशनसीब लोगों में से हूँ जो मैं कुछ लोगों के लिए कर भी पाया।
0: क्या बात है। सो ये एक छोटा सा परिचय हमारे जो खास मेहमान है अतुल शाह जी, जो कि पत्रकारिता जगत में 25 साल का अनुभव है, और सबसे खास बात यह है कि एक संस्थान को ही इन्होंने 25 साल दिए हैं, और संस्थान ने भी इनको बहुत कुछ दिया है। ये हम कह पा रहे हैं, इसलिए कह पा रहे हैं कि स्थायित्व, यानी कि एक जगह लगकर जब आप काम करते हैं तो आपकी एक पहचान बनती है, आपका एक नाम मार्केट में जाता है और लोग आपको जानते हैं, और जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो आपको हाथों हाथ दिया जाता है, आपका स्वागत इस्तकबाल किया जाता है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद कुछ और जानेंगे हमारे खास मेहमान जो कि आज जर्नलिस्ट हैं अतुल शाह जी। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: गगन के साथ और आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है, जर्नलिस्ट हैं आप में अतुल शाह जी, दैनिक जागरण के साथ आप 25 साल का आपका एसोसिएशन रहा है लेकिन वर्तमान समय में आप स्वतंत्र रूप से पत्रकार हैं यानी कि फ्रीलांसर काम करते हैं और फ्रीलांस जब काम करते हैं तो क्या क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, सम्मान कितना मिलता है और फ्रीलांस की जब बात आती है और जो एक व्यक्ति एक संस्था के साथ जुड़कर काम कर रहा है तो उसमें क्या अंतर है। सर मेरा सवाल आपसे ये है,
1: जब आप किसी संस्थान के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ बहुत सारी प्रतिबद्धताएं भी रहती हैं, लिमिटेशंस भी रहती हैं और आपको उनकी नीतियों के अनुसार ही कार्य करना होता है। जब मैं फ्रीलांस करता हूं तो फ्री लगा ही हुआ है, मैं स्वतंत्र हूं।
0: क्या बात
1: मेरी सोच, मेरी लेखनी, मेरी कलम सब स्वतंत्र है, मैं किसी भी विषय पर लिख सकता हूं। मुझे अब ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरे लिखने से कहीं मेरे संस्थान को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और आप जानते हैं कि ये व्यावसायिक दौर है, सभी संस्थान को अपने व्यावसायिक हितों को भी साधना पड़ता है, लेकिन अब मेरे साथ वो सारी लिमिटेशंस नहीं रह गई हैं। और फिर भी जब आप किसी संस्थान से जुड़े होते हैं तो आपकी एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है और आपको बताना नहीं पड़ता है कि आप क्या हैं। चूंकि अब हम 25 साल से जुड़े हुए हैं और इतना अनुभव है और छोटे से क्षेत्र में काम करते हैं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अब मेरी खुद की पहचान है।
0: क्या बहुत खुश।
1: और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे साथ काम किए हुए लोग और मेरे अंडर में काम किए हुए लोग आज सभी वहां के जितने भी नामी अखबार हैं उसके ब्यूरो चीफ हैं।
0: बहुत खूबसूरत।
1: तो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यही है या मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरे साथ मेरे अंडर में काम किए लोग आज अच्छे अच्छे पदों पर हैं,
0: पहुंचे हुए। असर आपने तो अपना अनुभव साझा किया। असर हम समाज में ये भी देखते हैं कि लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से पत्रकार हैं लेकिन उनकी पास्ट में कोई पहचान रही नहीं है जिसकी वजह से उनको आगे तवज्जो नहीं मिल पाती या यूं कहें कि वो संघर्ष कर रहे होते हैं। तो मैं समझ सकता हूं आपसे बात कर कि सबसे पहले आप अपनी पहचान बनाइए, उसके बाद फ्रीलांस काम करना चाहते हैं या अपना संस्थान खोलना चाहते हैं तब जाकर आपकी मार्केट वैल्यू होती है। क्या कहना चाहेंगे?
1: निश्चित, लेकिन प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर क्षमता है तो भले थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आपको आपकी पहचान अवश्य मिलेगी। आप संस्थान से अगर जुड़े होते हैं तो ये काम आपको थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आपको एक बड़ा बैनर मिलता है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है और आप अपने आप करते हैं तो थोड़ा आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ सकता है लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपको अपना प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा।
0: बहुत खूबसूरत। यानी कि लिसनर्स बातों बातों में एक बात निकल कर यही सामने आई है कि टैलेंट यानी कि क्वालिटीज, प्रतिभा अगर आपके पास है तो निश्चित तौर पर दिक्कत परेशानी आपके सामने जरूर आएंगी लेकिन शनै शनै धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आपकी मंजिल मिलेगी जरूर। वो प्रतिभा, वो क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए एक पत्रकार के अंदर, सच्चे अच्छे पत्रकार के अंदर, ये हम जानेंगे जरूर सर से मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दैनिक जागरण में 25 साल तक जुड़े रहे, आप हैं अतुल शाह जी, बड़े ही अच्छे पत्रकार हैं, बड़े ही अच्छे इंसान हैं। तो ये बातों का सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: बहुत बहुत स्वागत, आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और आज स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका नाम है अतुल शाह जी, जो कि बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और दैनिक जागरण के साथ आपका एसोसिएशन 25 सालों का रहा है। तो इतने गुणीजन जब लोग हमारे सामने आते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होता है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने इशारा किया था, चूंकि सर ने जब बात रखी थी कि प्रतिभा क्वालिटीज गुणों के बारे में बात हो रही थी, तो सर मैं यही जानना चाहता हूं कि एक अच्छे पत्रकार के अंदर, सच्चे अच्छे पत्रकार के अंदर वो कौन कौन सी प्रतिभाएं होनी चाहिए, वो कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसे हम कह सकते हैं कि वो पत्रकार है, उसके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते।
1: सबसे पहले सब तो ईमानदारी आता है, जो पत्रकार में नहीं समाज के हर विधा हर अंग में होना चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: और हम ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं तो अपने कार्य को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। और पत्रकार होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ईमानदार हों और ईमानदारी से काम करें, आईने की तरह एकदम स्पष्ट हों। और फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से शरीर के लिए चिकित्सक बहुत जरूरी होता है, उस तरह से समाज के लिए पत्रकार की भूमिका होती है। लेकिन हम धीरे धीरे मिशन से प्रोफेशन के उस दौर में पहुंच गए हैं कि जैसे आज आपके पाठक को क्या चाहिए आप इस पे फोकस करते हैं
0: जी।
1: आप ये फोकस नहीं करते कि उसे क्या चाहिए होना चाहिए। जैसे किसी डॉक्टर से मरीज उम्मीद करता है कि उसे मीठी दवा दी जाए
0: जी।
1: लेकिन अगर डॉक्टर जानता है कि इसे ऑपरेशन की जरूरत है, इसे इंजेक्शन की जरूरत है, इसे कड़वी दवा की जरूरत है, तो वो देता है। तो आजकल हमको पत्रकारिता में भी देख रहे हैं कि लोग पाठकों की रुचि के अनुसार चीजें उनको परोस रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए कि आज समाज को किस चीज की जरूरत है। अगर हम उस दिशा में काम करेंगे तभी समाज का विकास कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ईमानदार होना चाहिए और देखना चाहिए कि हम समाज हित में क्या कर सकते हैं, वो हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए।
0: बहुत खूब सर, आपने जो बात कही वाकई बिल्कुल खरी बात है और सच बात है कि ईमानदार होना चाहिए। और किसी भी पेशे में अगर हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी जो खुशबू है वो फिजाओं में चारों तरफ फैलती ही फैलती है। आज के समय में हम देखें, पत्रकारिता ही क्यों, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी कोई ईमानदारी के साथ काम नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से दिक्कत परेशानियां आ रही होती हैं और कहीं ना कहीं कहानियां बन रही होती हैं। क्योंकि पत्रकारिता का विषय है और आप एक पत्रकार हैं, हम अक्सर ये देखते हैं कि पेड न्यूज की बात होती है, अगर हमें कुछ रुपया पैसा मिल गया तो हम खबर दबा देंगे, नहीं मिला तो शायद हम उस खबर को उछाल देंगे। ये मैं छोटे से लेकर बड़े बड़े संस्थानों की बात कर रहा हूं, यहां हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, ना ही आप इस बात को यहां जिक्र करेंगे कि, लेकिन ये सच है कि इसके साथ ही मैं अगर दूसरी बात पर भी आता हूं कि अभी हम जो फ्रीलांस की बात कर रहे थे सर, चूंकि आपके पास तो अनुभव है सर, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको वो बारीकियां पता है, वो एथिक्स पता है, वो मान मर्यादा पता है। मैं एक 12th पास हूं या ग्रेजुएट हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई साहब की इनकम हो रही है, भाई साहब अगर किसी का रिपोर्टिंग कर आ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं तो कुछ रुपए पैसे आ जाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पत्रकारिता के क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है, जिनके पास जानकारी का अभाव है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे सर?
1: मैंने इससे पहले भी एक शब्द का प्रयोग किया था कि हम मिशन से प्रोफेशन के दौर में पहुंच चुके हैं।
0: ठीक है,
1: जब गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे महापुरुषों ने पत्रकारिता शुरू की थी तो उनका एक जरूर सोच रही थी और जरूर एक उद्देश्य रहा था कि हमें पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं
0: जी।
1: और सिर्फ उस समय के उद्देश्य था कि हमको समाज के हितों के लिए काम करना है। आज ये सारा बिजनेस ग्लैमराइज हो चुका है, उसमें बाजारवाद बहुत बुरी तरह से हावी हो चुका है
0: जी।
1: आज जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उन्हें सम्मान मिलेगा, उन्हें सिर्फ
0: सेवा करनी है,
1: सेवा करनी है, उन्हें सिर्फ ऐश्वर्य और उनकी न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे इसीलिए आज पत्रकार सम्मान खोते जा रहे हैं,
0: खोते जा रहे हैं।
1: 15 साल 20 साल पहले जब हम लोग पत्रकारिता करते थे तो हम लोगों के लिए इतना सम्मान होता था कि कोई भी आयोजन या कोई भी सभा या कोई भी कार्यक्रम तब तक शुरू नहीं होता था जब तक पत्रकार नहीं पहुंच जाते थे।
0: सही कहा।
1: और कहीं भी अगर किसी भी यूनियन और मालिकों में बात हो रही है तो वो यूनियन चाहती थी कि पहले पत्रकार हों, मजदूर और मालिक में बात हो रही है तो लोग चाहते थे कि नहीं पत्रकारों की उपस्थिति में हो। और आज उल्टा हो गया है, पत्रकारों को देख कितने लोग मारो मारो भागाओ भागाओ
0: जी जी
1: चिल्लाओ चिल्लाओ का दौर आ गया है कि ये जो है
0: जिम्मेदार हम सभी हैं।
1: इसके जिम्मेदार पूंजीवाद और बाजारवाद है। और जब से पत्रकारिता जो है संस्थागत हो गई है और इसको व्यवसाय बना लिया गया है और ये सेवी में रजिस्टर्ड होने लग गई है तब से इसमें निरंतर गिरावट आ रही है। और जल्दी से इसका इलाज नहीं किया गया तो वो हम अपने सम्मान

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ। मेरे साथ आज के जो मेहमान हैं, बिंदास सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें हो रही हैं, क्योंकि पत्रकार का यही काम है कि वो बिंदास बात रखे, जमाने के सामने सच के साथ वो बातें हमारे सामने आए। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल शाह जी, जो कि 25 साल का अनुभव रहा है, दैनिक जागरण से आपका एसोसिएशन रहा है। बहुत सारी बातें हो रही है कि पत्रकार के अंदर वो कौन कौन से गुण होने चाहिए, आज के समय में जो पत्रकारिता है वो कितनी बदल गई, ये सारी बातें हम सर से जान रहे हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि एक पत्रकार के अंदर ईमानदारी के साथ वो काम करेगा तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ सकता है, समाज में एक जागरूकता ला सकता है। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि जब हम ये देखते हैं कि किसी के पास अनुभव नहीं है और ज्ञान नहीं है पत्रकारिता का, और जिसकी एक गलती की वजह से दंगा भड़क सकता है, माहौल खराब हो सकता है। वर्तमान समय में हम ये भी देख रहे हैं, सरकार को हम यहाँ लाना नहीं भूलेंगे, कि सरकार ने शिकंजा भी कसा है। जो ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, तो उस संबंध में आपकी क्या राय, क्या कहना चाहेंगे?
1: आजादी की अभिव्यक्ति का हम लोग देख रहे हैं कि अब दुरुपयोग होना शुरू हो गया है, जबकि इसकी सीमाएं बहुत पहले से निर्धारित है। और बचपन में मैंने किसी इंग्लिश लेखक की कविता पढ़ी थी और मुझे एग्जैक्ट उसका नाम भी नहीं याद आ रहा, लेकिन उसमें यह था कि आपकी आजादी का मतलब है कि आप अपनी छड़ी घुमाएं लेकिन वो किसी की नाक से न टकराए।
0: क्या बात है।
1: तो आजादी की अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि अभिव्यक्ति आप उतनी ही स्वतंत्र हैं कि जिससे दूसरा कोई हर्ट न हो, आहत न हो और किसी का नुकसान न होता हो।
0: क्या बात, बहुत
1: खूब। और जो वर्तमान दौर में अभी पत्रकार बने हैं या आगे बनेंगे, उनके लिए मेरा एक ये संदेश है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं या

0: इंटरव्यू करने जाते हैं या रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो आपको पहले उसके बारे में पहले से स्टडी कर लेनी चाहिए। अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो आप किस क्षेत्र, वो किस क्षेत्र में है उसके बारे में अगर आप जान के जाएंगे तो आप उससे बेहतर सवाल कर सकेंगे और वो जो बता रहे हैं उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
1: बहुत खूबसूरत।
0: और जैसे हम लोगों के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया था कि एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर, उसी तरह से पत्रकार को भी जिसका इंटरव्यू लेने जा रहा है उससे उसके बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में उससे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए,
1: होनी चाहिए,
0: चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो सामाजिक हो या वो राजनीति से संबंधित हो।
1: तभी बात करने में मजा आएगा,
0: तभी मजा आएगा। मैं एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं नया नया पत्रकार हुआ था तो हमारे यहाँ उस समय के केंद्रीय कारागार मंत्री का हमारे क्षेत्र में दौरा हुआ था, हम भी उत्साहित थे और वो मंत्री जी भी नए नए बने थे, वो भी बहुत उत्साहित थे। मजेदार बातें हो रही थी। मैंने पूछा, मंत्री जी जब आपसे, आप कारागार मंत्री बने हैं तो आपने अपने कारागार के लिए क्या क्या किया है? वो बहुत उत्साहित थे, उन्होंने कहा कि हमने ट्रेमेंडस चेंज किए हैं, हमने अब कैदियों की सुविधा के लिए टीवी लगवा दिया है, उनको खाना अच्छा मिलता है, उनको दाल मिलती है, उनको रोटी मिलती है, उनको घी मिलती है, उनको मैगजीन मिलती है, हमने कूलर की व्यवस्था भी की है और हमने उनको बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, वहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की गई है, हफ्ते में एक दिन वो टीवी भी देख सकते हैं। मैंने कहा, मंत्री जी आपने तो इतना अच्छा काम किया है और हम जेल के अंदर इतनी सुविधाएं हैं और बाहर तो लोग बिना खाए मर रहे हैं, तो कितना अच्छा होगा कि हम छोटा सा अपराध करें और जेल चले जाएं। मंत्री जी घबरा गए, बोले भैया फंसाओ मत, मैं नया नया मंत्री बना।
1: उससे एक हादसे तो जरूर पैदा हो गया। क्योंकि तो आपने बाहर से ज्यादा सुख सुविधाएं अंदर दे रखी हैं।
0: तो भाई आप छोटा सा क्राइम करके अंदर जाएंगे तो आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगे जो बाहर आपको उपलब्ध नहीं है।
1: तो इस बात का रोचक यही है कि सर की कहा भी जाता है, जो आपने एक वाक्य का यहाँ जिक्र किया, अक्सर हमने सुना भी है कि तोल मोल के बोलना चाहिए कि क्योंकि जिस तरीके से कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, जबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, तो इस बात को अगर हम सब ध्यान रखेंगे कि तोल मोल कर बोलेंगे तो हमारी शब्दों की गरिमा बनी रहेगी, माहौल अच्छा बना रहेगा और पत्रकारिता की जो एक भूमिका है, या यूं कहें कि पत्रकार की जो एक भूमिका है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके कंधों के ऊपर, सच्ची अच्छी बात रखे, अगर कोई बात कड़वी भी है तो बहुत सदे हुए शब्दों में रखे ताकि एक माहौल अच्छा बनकर रहे। तो यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो बातों का सिलसिला लगातार जारी है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान है अतुल शाह जी, जो कि पेशे से पत्रकार है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम आपको मिलेंगे यहीं, कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल, मैं हूं गगन आपके साथ। आज हम जो बात कर रहे हैं, पत्रकारिता क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, जर्नलिज्म के बारे में बात हो रही है, और पहले के समय के बारे में बातें की, आज के समय के बारे में बातें की। पहले का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि 25 सालों का अनुभव है। हमारे जो खास मेहमान है, आप है अतुल शाह जी। 25 साल का जब अनुभव है, वाकई बहुत बड़ा अनुभव है। तो उस समय क्या माहौल था, आज के समय में क्या माहौल है, और हमें किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सर, जब किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि आपके साहबजादे शादा विश्वविद्यालय के मास्कॉम डिपार्टमेंट में यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बीइंग अ फादर, आप एक पिता होने के नाते उनको क्या शिक्षा देते हैं, किन किन बारीकियों को आप बताते हैं, समझाते हैं?
1: ये मेरे लिए बहुत गर्व का अवसर है कि मेरे पुत्र जहाँ अध्ययन कर रहे हैं, आज मुझे जो है साक्षात्कार देने का मौका मिला है। और उनकी रुचि थी पत्रकारिता में
0: जी,
1: है ना। मैं पत्रकार हूँ, इसलिए मैंने उसके इस आने के लिए प्रेरित नहीं किया है, बल्कि वह स्वतः प्रेरित थे। उनकी मैं जब लिखने की शैली को देखता था तो मुझे लगता था कि उन्हें इस फील्ड में जाना चाहिए। जबकि आज अधिकांश अभिभावकों का होता है कि वो उनका बेटा डॉक्टर बने
0: जी,
1: इंजीनियर बने या किसी और भी तरह जाए। लेकिन हम आज दौर बदल चुका है, हम अपने बच्चों को अपना करियर चुनने की पूरी आजादी दे सकते हैं और हमें देना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं अपने बच्चे से यही उम्मीद करूंगा कि वो एक अच्छा नागरिक बने। अगर वो अच्छा नागरिक बनता है तो सारी खूबियां, सारी विशेषताएं उसके अंदर स्वतः आ जाएंगी। और उसे अपने पैसे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, और सिर्फ पैसे के लिए अगर वो काम करना चाहेंगे तो उससे बेहतर है कि वो ना करें।
0: क्या बात, क्या बात है।
1: अगर
0: क्या
1: हम
0: बात?
1: समाज को कुछ दे सकते हैं
0: हाँ।
1: तो यही हमारी उपलब्धि होगी। और मैं चाहता हूं कि मैं 25 साल के अनुभव को उनको जरूर जो है दूंगा कि वो जो है आगे बढ़ें और जरूर समाज को एक नई दिशा दें।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लिसनर्स, मैं समझता हूँ कि यही संदेश जो अपने पुत्र को वो दे रहे हैं, हमारे खास मेहमान, हर एक बच्चे के लिए ये एक छोटा सा संदेश है सर की तरफ से, कि इन बातों को भी अगर आप अपने जीवन में ढाल लेंगे, अमल में लेकर आएंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। और असल मायने में, क्योंकि जब हम दुनिया में आए हैं तो ये काम अच्छा करेंगे कि लोगों के दिलों में जगह बनाकर रखें, कुछ अच्छा करें समाज के लिए। तो अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं, तो इन बातों को सीखिए, समझिए और अमल में लेकर आइए, जिन बातों का जिक्र सर ने यहाँ किया है। तो सर, यहाँ पर वक्त हो चुका है आपसे अनुमति ले लेने का, और ये जो चर्चा रही वाकई बहुत अच्छी चर्चा रही, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला है आपसे। और बस यही कहूंगा कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आप ऐसे ही अपने ज्ञान से हम सबको यूं ही रोशन करते रहें।
1: धन्यवाद गगन जी, बहुत अच्छा लगा। और हमने पत्रकारिता में उस समय से आज तक का सफर तय किया है जब हमको किसी अपनी न्यूज को अपने सेंटर में भेजने में 2 दिन लगते थे और समाचार 3 दिन बाद प्रकाशित होते थे। फिर भी उनकी उस समय अच्छी भूमिका होती थी क्योंकि कुछ अच्छा लेसन मिलता था। आज जल्दी जल्दी का दौर है, त्वरित का दौर है, और ब्रेकिंग न्यूज का दौर है, और उसी कारण बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं।
0: क्या बात,
1: तो हमें जल्दी के चक्कर में जो है, फायदे के चक्कर में कायदा नहीं बिगाड़ना चाहिए, और समाज हित सर्वोपरि।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत सर, वाकई बहुत खूबसूरत। आपके साथ ये चर्चा बहुत अच्छी रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लिसनर्स इस चर्चा से लाभ जरूर उठाएंगे। और 0120406025 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर कि ये विशेष वार्ता आपको कैसी लगी। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप इस वार्ता से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। खासकर हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, या इस फील्ड में भी नहीं है लेकिन इन बातों से तो जरूर आप सीख लेंगे ही कि जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। जाते जाते सर, कोई एक गाना जो आपके दिल के आसपास रहता हो, गाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, सुनना सुनाना चाहते हैं, तो एक गाना हम आपके पसंद का अपने लिसनर्स को जरूर सुनाना चाहेंगे।
1: मैं चाहूंगा कि अजीब दास्तां है ये।
0: क्या बात है, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। तो चलिए, वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, अनुमति ले लेने का। ये चर्चा कैसी रही बताइएगा जरूर। तो सर, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
1: शुक्रिया।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत, जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरु शारदा 90.8।

0: फील्ड आप ही के लिए है, तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहां से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियां सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ, और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:10 होने जा रहे हैं। 13 तारीख है, यानी कि सोमवार का दिन। जाहिर सी बात है कि जब आप मंडे को ऑन रोड होते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, और बरसात के मौसम में इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा कि 5 से 10 या यूं कहें कि 15 मिनट अगर आप पहले निकल रहे हैं घर से, तो यकीन मानिए कि आप ऑफिस टाइम से पहुंच पाएंगे। अदरवाइज बारिश के मौसम में दिक्कतें परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है। मसलन ऑन रोड जाम की स्थिति, उस जाम की वजह से हम लेट ऑफिस पहुंच रहे होते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, अगर वो बंद नहीं है तो बारिश की वजह से वो ढक्कन, या यूं कहें कि वो सीवर हमें नज़र नहीं आता, घटना दुर्घटना घट जाती है। और अभी हाल फिलहाल में ग्रेटर नोएडा में भी एक ऐसी घटना घटी कि जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु तक हो गई। हम नहीं चाहते कि जनधन हानि हो, इसलिए सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और ऑन रोड जब आप हैं तो बारिश के मौसम में सच बात तो है कि ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो जाता है, तो अनावश्यक हॉर्न ना बजाएं। सुरक्षित चलने का इशारा सिर्फ यही है कि सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल करेगा, और ओवर स्पीड में मत चलेगा, गलत दिशा से ओवरटेक मत करेगा, ये छोटी छोटी बातें इनको नजरअंदाज ना करेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरक्षा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, तर्क धूम तर्क धूम।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है। इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
1: माँ के दूध के साथ जरूरी है बच्चे के लिए पौष्टिक आहार।
0: केवल माँ का दूध
1: नहीं बना पाएगा बच्चे को मजबूत।
0: अतिरिक्त पोषण की जरूरत,
1: दूध के साथ ऊपरी आहार की अहमियत।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
7: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। जनाब मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और प्रोग्रामिंग रेडियो की सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार हम यहां से ऑन एयर होते हैं। ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। स्टूडियो की घड़ी में 9:21 हो चुके हैं, 13 तारीख है। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इंतजार तो जनाब हम भी मौसम का कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मौसम की जो अपडेट है वो हमारे सामने निकल कर यही आ रही है कि दिल्ली NCR में आज यानी कि 13 जुलाई 2026 को बारिश के बाद एक बार फिर गर्मी का सितम बढ़ने वाला है। और सच बात तो ये कि यकीन मानिए कि उमस इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत परेशानी महसूस हो रही है। किसी को सर दर्द की शिकायत, किसी को जी मिचलाने की शिकायत, तो कुल मिलाकर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। IMD के अनुसार आज दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे इलाकों में बारिश की संभावना बेहद कम है और मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 36 से लेकर 38 डिग्री तक जाने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान सुबह के समय तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम की जो स्थिति रहेगी, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं लेकिन बरसात के आसार बिल्कुल नहीं है। विशेष चेतावनी ये कि दोपहर के समय दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में तेज धूप, धूल भरी आंधियां और गर्म हवाएं चल सकती हैं। और इसके अलावा अपडेट निकलकर मौसम की यही आ रही है कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि आसमान में जो क्लाउड जोन, जो बादल अब ईस्ट इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया और जिसके चलते पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं दिल्ली NCR के आसपास इलाके सूखे रहेंगे यानी कि बारिश नहीं है, तो आने वाले समय में हमें बारिश का इंतजार करना होगा। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग।

जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:31 हो चुके हैं। कितने सालों बाद जब भी मिला है प्यार हो गया, क्या बात है। मुझे लगता है कि जब भी आप मिले, अच्छी तरीके से मिलिए और पुरानी यादों को ताज़ा करिए। और इंसान के बीच में मुझे लगता है प्यार ही एक ऐसी कड़ी है कि जिसकी वजह से इंसान का नाता, या प्यार की वजह से इंसान का जानवर से नाता, या जानवर का इंसान से नाता बना रहता है। तो इसीलिए अपने आसपास प्यार रहने दीजिए, बेशुमार रहने दीजिए। चलिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। मेहनत, कहते ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, और कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं हुआ करती। लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। तो मुझे लगता है कि जब आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो आपके पक्ष में ज़रूर आएंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ इसरो की। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और जिसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो बेंगलुरु में है। और इसका मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष तकनीक विकसित करना और उसका उपयोग राष्ट्रीय विकास में करना है। ये डिटेल मैंने आपको बता दी। अब इसके पीछे मकसद क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। अब बात सुनने में ये आ रही है कि इसरो ने एक अच्छा कारनामा किया है, यानी कि इसरो ने 3 सफल परीक्षण किए हैं। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि अंतरिक्ष यात्री समुद्र में अगर कूदेंगे तो डूबेंगे नहीं, गगनयान के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है। तो 3 बड़े सफल परीक्षण हुए हैं और उस बात के लिए लख बधाई। यानी कि पहला परीक्षण ये कि समुद्र में उतरने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये किया गया। दूसरा परीक्षण है क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को अलग करने की प्रक्रिया की जाँच के लिए ये परीक्षण किया गया। और गगनयान मिशन के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। तो लख बधाइयां, बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे वैज्ञानिकों को इस मेहनत के लिए। बहुत बहुत बधाई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। स्टूडियो ऑल इज सुरशाद 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में लगातार मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ, हमेशा आपको अप टू डेट रखता हूँ। सच बात तो ये कि 2025-26 की जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भाग दौड़ शुरू हुई थी लास्ट ईयर, ऐसे ही 2026-27 की जो प्रक्रिया है वो लगातार शुरू है, चल रही है और लोग लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं। जैसे शारदा विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को, समझने को, पढ़ने को मिलेंगे और एडमिशन का जो माहौल है वो खुला हुआ है, यानी कि लोग आ रहे हैं अपनी क्वेरी के साथ आ रहे हैं, समाधान यहाँ से पा रहे हैं और एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपका बहुत बहुत दिली स्वागत है। और SSMFE की अगर मैं बात करूँ तो शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, यहाँ जब आप आते हैं तो आर्जिंग आप सीख सकते हैं, एडिटिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, कैमरा हैंडलिंग करना सीख सकते हैं और फिल्म मेकिंग करना सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो इसलिए एक बार जब आप यहाँ आएंगे तो यहीं के होकर रह जाएंगे। ऐसी DU के आंकड़े को मैं पढ़ रहा था, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की होड़ लग चुकी है। 2,02,73 लाख से भी ज़्यादा UG जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। तो चलिए जहाँ पर भी आप जाएं अच्छा करें, बेहतर करें और एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखें, अपने बारे में सोचें, फैमिली के बारे में सोचें और देश के बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर पर उसका जो परिणाम है वो सुखद आएगा, अच्छा आएगा, आपके फेवर में, आपके कॉलेज के फेवर में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सुरशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:45, 13 तारीख, गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:53 हो चुके हैं। 13 तारीख है, हमारे आसपास उसका खास है, उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। बात कर लेते हैं कि मेटा के बारे में, यानी कि अभी कुछ खास ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक झमेला हो गया। बात निकलकर ये सामने आ रही कि मेटा एक बार फिर से विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा था। अब उसके बाद कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में AI फीचर को वापस लेने का फैसला ले लिया है। कंपनी ने हाल ही में AI इमेज जनरेटर टूल म्यूज इमेज को लॉन्च किया था और उसके बाद फीचर विवादों में घिर गया। फिर कंपनी ने इस फीचर को वापस लेने का फैसला ले लिया है। MUSE इमेज यानी कि म्यूज इमेज टूल के तहत कोई भी व्यक्ति सिर्फ प्रॉम्प्ट देकर किसी भी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग करके उसकी AI इमेज बना सकता था। विवाद बढ़ने के बाद मेटा ने इस फीचर को अभी हटा दिया है क्योंकि लोग उसका मिस यूज करने लगे थे। और मेटा ने शुक्रवार को अपने ब्लॉग पोस्ट में ये कहा है कि म्यूज इमेज को कंपनी बंद कर रही है और साथ ही कंपनी ने बताया कि उनका मकसद लोगों को एक यूजफुल क्रिएटिव टूल देना था। हालांकि लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया जिसके बाद मेटा ने इस फीचर को रिमूव कर दिया है। हिंदुस्तान है या यूं कहें कि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है और सुरक्षा सबका अधिकार है और सरकार ने ये हस्तक्षेप किया है और निश्चित तौर पर ये सबके हित में है ना। और चीज़ें अगर कारगर होती हैं तो निश्चित तौर पर चीज़ें चलती हैं, अगर नहीं, लेकिन कहते ना कि कहीं मिसयूज हो रहा है तो उसके बारे में विरोध करना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूँ गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सॉन्ग क्रेडिट्स सिंगर्स
2: वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9 to 11। अपना ख्याल रखिएगा, टेंशन ना लेने का ना टेंशन देने का। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और उसके बाद फिर रेडियो ओपीडी का एक विशेष कार्यक्रम जो कि सेहत सही लाभ कई के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। 120-40-60-205 के जरिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in के जरिए आप हमसे मेल जोल बढ़ा सकते हैं और शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आप सबके लिए खुले हुए हैं। वक्त इशारा, मैं होता हूँ 9 to 11, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान चल रहा है, तो इसी क्रम में सुनते हैं सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम जो आपको टीबी के प्रति जागरूक करेगा और आप इस बीमारी से बच पाएंगे और अपने परिवार को बचाएंगे, साथ ही साथ औरों को भी जागरूक करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम जो आधारित है 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में और बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ और जागरूक रख सकते हैं। आज हमारे साथ हैं सेहतिया सिंह जी।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा से ही लोगों को सेहतमंद रहने के लिए प्रेरित करने में हमारी सहायता करते हैं और आज का एपिसोड तो आप जानते ही हैं कि बहुत खास है।
2: श्रेयसी, बिल्कुल जानता हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया, साथ ही साथ हमारे सहयोगी शशि कपूर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का, जो एक मुहिम चला रही है टीबी हारेगा देश जीतेगा। उसमें हम सब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमें सहयोग मिल रहा है एक जो संस्था है जिसका नाम है स्मार्ट। उसी के तहत हमने एक वादा किया है कि कुछ विशेष कार्यक्रम करेंगे, जैसे कि आज हम यहाँ पर रेडियो पर चर्चा परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, कुछ पोस्टर मेकिंग के कार्यक्रम हो रहे हैं और भी बहुत कुछ। बड़े बड़े अधिकारी भी हमसे जुड़ रहे हैं जो कि टीबी के विषय में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। मैं तो आपका और आपके रेडियो का बहुत खूब ध्यान करता हूँ, क्योंकि आप कितने लोगों को सेहत के विषय में जानकार बना रहे हैं। गांव में निकल जाओ, किधर भी निकल जाओ, तो चहुओर यानी कि चारों दिशाओं में सुनो शारदा 90.8 एफएम की चर्चा होती है।
0: बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेहतिया सिंह जी। आप और भाभी हमारे साथ ना जुड़े तो भला हम कहां से इतनी जानकारी दे सकते हैं।
2: भाई भाभी का आपने जिक्र कर दिया है तो चलो खरी अंदर की बात है भैया। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज हुई थी, इसलिए 24 मार्च को एक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है।
1: तो ये इतनी पुरानी बीमारी है और हम इससे आज तक जूझ रहे हैं।
2: शेसी, आपने बहुत सही सवाल किया, यही तो दुखद बात है, लेकिन ये सच है। और आज भी हमारे देश में अनेकों प्रयासों के बाद भी लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते, समय पर टेस्ट नहीं करवाते, समय से दवाई नहीं लेते और सावधानी तो बिल्कुल ही नहीं बरतते।
1: सही कहा आपने। हम भी तो लंबे समय से अपने सामुदायिक रेडियो के माध्यम से बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए टेस्ट और इलाज की जरूरत है। टीबी से डरने की या उसके लक्षण को छिपाने की जरूरत नहीं है।
0: सही कहा तुमने कि टीबी से घबराने की जरूरत तो है ही नहीं।
2: भाई शशि, इसका तो बहुत ही छोटा सा फंडा ये है कि जागरूक रहो और समय रहते बिना किसी बहानेबाजी या लापरवाही के टेस्ट करवाओ। हाँ, रही बात टेस्ट की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शारदा अस्पताल का टीबी विभाग इसमें सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे मरीज आते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और हमने लोगों को जागरूक भी किया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो अगर आप किसी भी संक्रामक व्यक्ति के टच में आए हो या आपको कोई भी टीबी का लक्षण दिखाई दे तो टेस्ट जरूर करवाएं, और अगर पॉजिटिव हो तो अपने इलाज के लिए तैयार हमेशा रहें।
0: ये सब तो सही कह रहे हो आप सेहतिया सिंह जी, तो क्यों ना हम एक बार फिर अपने श्रोताओं को टीबी से संबंधित कुछ जरूरी बातें बता दें।
2: क्या बात है, ये तो आपने हमारे मन की बात ही छीन ली, क्यों नहीं। सो दोस्तों, आपने टीबी या क्षय रोग या फिर तपेदिक के बारे में तो आप सब जान ही गए होंगे, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि क्षय रोग भारत के लिए गंभीर समस्या बन गई है, जो ये एक संक्रामक और हवा से फैलने वाला रोग है, जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक हवा के माध्यम से पहुंचता है। टीबी के चलते प्रतिदिन लगभग 4000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। इस बात को ध्यान रखे, अंडरलाइन कर रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हर रोज 4000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। सोचिए, उसमें से एक डॉक्टर हो सकता था, इंजीनियर हो सकता था, एक क्रिकेटर हो सकता था, और किसी की जान टीबी की वजह से चली जाए, जबकि हमारे पास इसका इलाज संभव है, तो ये सोचने की बात है। और करीब 28,000 लोग, श्रेयसी और शशि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बीमारी के शिकार होते हैं।
1: तो सेहतिया भैया, इसके लक्षण क्या क्या है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए।
2: भाई श्रेयसी, आप बहुत समझदारी वाली बात कर रही हैं। अच्छा लग रहा है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए इस प्रोग्राम को आगे लेकर जा रहे हैं। लक्षण की बात ये सामने आती है कि लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहना। श्रोताओं ध्यान से सुनना, खांसी में खून आना, तेज बुखार और रात को पसीना आना, बिना किसी कारण अचानक वजन कम होना, थकान और कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना और शरीर में सुस्ती रहना, छाती में दर्द या सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना।
0: बिल्कुल, कल ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर के डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि कई शोधों से ये साबित हुआ है कि लगभग हम सभी टीबी बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं। केवल गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही नहीं, बल्कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति इस बैक्टीरिया से प्रभावित हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि टीबी का बैक्टीरिया कैसे और कब सक्रिय होता है। हम रोजाना भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं और कई लोगों के संपर्क में आते हैं। टीबी का बैक्टीरिया किसी के भी शरीर में मौजूद हो सकता है, लेकिन ये असिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है, यानी इसके लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते। हालांकि जब तक आप युवा और स्वस्थ हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम कर रही है, तब तक आपका शरीर इस बैक्टीरिया को नियंत्रित रखता है, उसे एक तरह से कैप्सूल में बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, टीबी सक्रिय हो जाता है और रोग फैलने लगता है।
1: मतलब है कि जब आप मजबूत रक्षा और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ स्वस्थ हैं, तो कैप्सूल के अंदर रोगाणु जीवित रहेंगे और कोई नुकसान नहीं करेंगे।
2: भाई आप दोनों बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और जब इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो सेहतिया सिंह अच्छी बातों के साथ कुछ और अच्छी बातें कर ही लेता है। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दोनों, बैक्टीरिया कैप्सूल के अंदर लंबे समय तक, यहाँ तक कि कई सालों तक रह सकते हैं। जब ये बैक्टीरिया कैप्सूल के अंदर होता है तो आप संक्रामक नहीं होते हैं और टीबी के कीटाणु को नहीं फैला सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपका बचाव सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आपको जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां या मधुमेह या HIV जैसी पुरानी बीमारियां हो सकती हैं, या आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को उतना मजबूत नहीं बनाती है, जैसे कि कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या स्टेरॉयड, या यदि आप धूम्रपान करते हैं, या आप बहुत अधिक शराब पी रहे हैं, या अच्छी तरह से नहीं खा रहे हैं और अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो आपका ये कैप्सूल कमजोर हो जाता है, बैक्टीरिया बाहर निकल सकता है और आप संक्रमित हो सकते हैं।
0: वाह सेहतिया जी, आप तो वाकई ज्ञानी भी हैं और इतने कॉम्प्लेक्स चीजों को इतनी सरल भाषा में समझा भी देते हैं। आपने सही कहा, यदि आप अस्वस्थ हैं या लंबे समय तक किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो बैक्टीरिया आपके फेफड़ों या शरीर के किसी अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं।
1: और जब आप संक्रमित होते हैं, तब आपके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आप उन्हें अगर नजरअंदाज कर देते हैं तो आपकी समस्या गंभीर हो सकती है। इसीलिए कोई भी लापरवाही ना करें और अपनी जांच तुरंत करवाएं।
2: सो लिसनर्स, कहने का मतलब यही है जो श्रेयसी और हमारे शशि भैया बातें आपको बता रहे हैं, इन बातों को गांठ बांध लीजिए। और हाँ, एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये है कि टीबी की दवा केवल उचित जाँच और परीक्षण के बाद ही ली जानी चाहिए और केवल प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से ली जानी चाहिए। और दवा की ये खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समय का बड़ा महत्व है। देखिए डॉक्टर कहते हैं कि दवा की प्रत्येक खुराक समय पर लेनी चाहिए। जब आप समय पर लेंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ आपको मिलेगा और एक महीने के अंदर कीटाणु कमजोर हो जाएंगे और आप किसी और को संक्रमित नहीं कर पाएंगे।
1: लेकिन अगर आप दवाओं का पूरा कोर्स नहीं लेते हैं तो टीबी वापस आ सकता है और टीबी का एक मजबूत रोगाणु बन सकता है। जब ऐसा होता है तो एक से बढ़कर एक एंटीबायोटिक्स भी कीटाणुओं पर काम नहीं करते हैं।
0: बिल्कुल श्रेयसी, लेकिन इस अवस्था को प्रतिरोधी टीबी कहते हैं। दवा प्रतिरोधी टीबी अधिक जटिल होती है और इसका इलाज करना भी कठिन होता है।
2: ये तो आपको हमने पहले भी बता दिया है कि देश भर के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्रों और सुविधाओं में जांच, परीक्षण और उपचार पूरी तरह से निशुल्क है। यदि आपको कोई संदेह है तो कृपया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 800-11-4x6 यानी कि 4 बार 6 पर कॉल करने में संकोच ना करें। एक बार पुनः बता देता हूं हिंदी में, 1800-11-6666 पर कॉल करने में बिल्कुल भी आप संकोच ना करें। और पता करें कि आपके लिए सबसे निकटतम केंद्र कहां पर है।
1: और सेहतिया भैया, मैं यहाँ ये भी जोड़ दूं कि आप अपने फोन पर टीबी आरोग्य साथी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जिले में सरकारी और निजी क्षेत्र के टीबी स्वास्थ्य केंद्रों को खोजने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पर जा सकते हैं। आप उन स्वास्थ्य सुविधाओं पर बिंदु व्यक्तियों के नाम और संपर्क नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं।
2: तो आप तो जानते ही हैं कि हर जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग का काम चल रहा है। सरकार टीबी मुक्त भारत के मिशन को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। अगर आपको टीबी बीमारी के लक्षण हैं, तो जल्द से जल्द जांच करवाएं। जितनी जल्दी टीबी का पता लगाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है, उतना ही इसका आपके दोस्तों और परिवार के सदस्यों में फैल सकने की संभावना कम हो जाती है और आपके लिए भी पूरी तरह से ठीक होने की और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का मौका होता है।
0: बिल्कुल सियातिया जी, लेकिन मैं आपकी बात में कुछ बातें भी जोड़ना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जांच स्वयं करानी होगी। ऐसा ही नहीं है कि अगर एक व्यक्ति का इलाज हो रहा है तो आप वही दवा ले सकते हैं और अपने टेस्ट करवाने से या खुद का इलाज करवाने से बच सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रोगियों पर कई अलग अलग एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है जो उनकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। टीबी के कुछ रूप कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी हैं और ये आपको केवल डॉक्टर ही बता सकते हैं।
2: भाई शशि कपूर साहब, आपने बात अच्छी कही, मैं इस बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। तो बात यही समझ में आती है कि यदि आप टीबी पॉजिटिव हैं लेकिन दवाई ले रहे हैं तो आपको आमतौर पर इस दौरान अलग रहने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि संक्रमण को अपने परिवार और दोस्तों में फैलने से रोकने के लिए कुछ बुनियादी सावधानियां बरतना हमेशा अच्छा होता है।
0: तो सेहतिया जी, आप हमारे श्रोताओं को एहतियात के बारे में भी बताएं।
2: भाई आप कहें और हम ना बताएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आपको टीबी है तो सबसे पहले अपने अपने परिवार और अपने दोस्तों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम, स्कूल या कॉलेज से तब तक दूर रहें जब तक कि आपकी टीबी उपचार टीम आपको ये सलाह न दे दे। खांसते, छींकते या हंसते समय अपना मुंह ढक लें। खांसने या छींकने के बाद हाथ धोने की आदत सुनिश्चित करें। किसी भी इस्तेमाल किए गए टिश्यू को सावधानी पूर्वक एक सील बंद प्लास्टिक बैग में फेंक दें। जहां आप रहते हैं वहां ताजी हवा की अच्छी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खिड़कियां खोलें। यदि भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं तो हवा का संचार सुनिश्चित करने के लिए पंखे का प्रयोग करें। दूसरे लोगों के साथ एक ही कमरे में सोने से बचें। साथ ही नियमित रूप से दवाई लें।
0: बिल्कुल, लेकिन मैं उन श्रोताओं के लिए जो अपने परिवार के किसी टीबी संक्रमित व्यक्ति के साथ रह रहे हैं एक सलाह देना चाहूंगा कि वे भी अपनी जांच करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप भी संक्रमित हों। ये सिंपल टेस्ट होते हैं। इन परीक्षणों में छाती का एक्सरे या कुछ रक्त परीक्षण, त्वचा परीक्षण या फिर थूक परीक्षण शामिल हो सकते हैं।
1: और कृपया लक्षणों को हल्के में ना लें, क्योंकि याद रखें कि केवल इलाज से ही टीबी की रोकथाम की जा सकती है और टीबी के रोगियों को ठीक किया जा सकता है। अनुपचारित टीबी घातक बन सकती है, हालांकि मौत कम होती है और यहां तक कि अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सावधानी पूर्वक और नियमित रूप से पालन किया जाना चाहिए।
2: भाई श्रीसी, आपने बहुत अच्छी तरीके से सीधे सच्चे शब्दों में हमारे श्रोताओं को आपने समझा दिया। मैं यूँ कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में ऐसी सोच बनी हुई है कि टीबी हो गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो ये नहीं जानते कि टीबी की सही समय पर अगर जांच और इलाज हो तो इसके फैलाव को रोका जा सकता है। और यदि नियमित रूप से दवाई ली जाए तो इसका इलाज भी हो सकता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में ऐसी सोच बनी हुई है कि टीबी हो गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वे ये नहीं जानते कि टीबी की सही समय पर अगर जांच और इलाज हो तो इसके फैलाव को रोका जा सकता है, और यदि नियमित रूप से दवाई ली जाए तो इसका इलाज भी हो सकता है।
0: बिल्कुल, लेकिन सेहतिया जी, इलाज के लिए जरूरी है जांच। टीबी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के कारण वर्ष 2019 से अनुमानित 6.3 करोड़ लोगों की जान बचाई जा सकी है। 2022 में कुल 20.77 लाख टीबी के मामले सामने आए और वर्ष 2022 में 100 करोड़ से ज्यादा कमजोर आबादी की टीबी की जांच की गई।
2: भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी शशि कपूर साहब, आपने जो पढ़ाई की है बहुत अच्छी की है। जो मैंने सुना कि 20.77 लाख, बड़े अच्छी तरीके से आपने इसको उच्चारित किया। तो बात टीबी पर आते हैं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई भी टीबी पॉजिटिव या बैक्टीरिया से संक्रमित रोगी है तो उसको दवाओं सहित निशुल्क निदान और उपचार की सुविधा भी प्रदान की जाती है। आपको पता है कि सरकार टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए जो टेस्ट ट्रीट एंड ट्रैक का मुहिम कोविड से लड़ाई लड़ने में अपनाया गया था, उसी मॉडल को टीबी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
0: बिल्कुल सेहतिया जी, आपकी बातों से हमें ऐसा भरोसा प्रतीत हो रहा है कि हम टीबी मुक्त भारत बनाने में जरूर सफल होंगे। भागीदारी से तो कुछ भी संभव हो सकता है। याद है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कोविड वैक्सीनेशन पर सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाया था और उसमें सफलता भी पाई थी, उसी प्रकार

0: बार हम टीवी पर वार करने में सफल होंगे।
1: मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि टीवी मुक्त भारत के लिए घर घर स्क्रीनिंग और मुफ्त सीबी नेट ट्रू नेट की जा रही है, यानी कि ये एक जांच का नाम है जिससे सुधार साफ नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार निश्चय मित्रों के जरिए समुदाय की भागीदारी बढ़ा रही है, जहां व्यक्ति या संगठन टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें सही पोषण, दवाइयां और मानसिक समर्थन देते हैं।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों टीबी से लड़ने के लिए दवा ही नहीं बल्कि सही पोषण की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए सरकार द्वारा चलाई जा रही निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को 1,000 रुपए प्रतिमाह पोषण सहायता प्रदान की जाती है। यदि हमारे श्रोता चाहें तो वे भी निक्षय मित्र बन सकते हैं और किसी भी टीबी रोगी को गोद ले सकते हैं और इस मुहिम में अपना योगदान दे सकते हैं।
1: भाई मैं इतना उतावला हो रहा था कि तुम्हारी बात रुके, लेकिन मैं ऐसा लगा मैं कह गया कुछ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था भाई शशि कपूर साहब, इस मुहिम में लोग आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग अच्छे अच्छे काम की पोस्ट डालते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर भी आप आइए, इस सरकार की मुहिम से जुड़िए, लोगों की मदद करिए, उनको दोस्त बनाइए। और टीबी मरीज हम में से आप में से ही है, डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कपूर साहब कि भारत को टीबी से निदान दिलाने के लिए टेक्नोलॉजी भी कमाल का साथ दे रही है। निश्चय पोर्टल का उपयोग रियल टाइम मरीज ट्रैकिंग, उपचार निगरानी और चिकित्सा उपचार के पालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे मरीजों तक समय रहते बेहतर मदद पहुंचाई जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा सीतिया जी आपने। तो दोस्तों याद रखिए, टीबी का इलाज होगा अधूरा तो टीबी मुक्त भारत का सपना नहीं होगा पूरा।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: तो सीतिया जी, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं, हमारे जो सुनने वाले हैं उनके साथ साझा की, और जरूर हमारे सुनने वाले लिसनर आपकी बातों का बखूबी ध्यान रखेंगे। तो चलते चलते अब शपथ भी ले लें।
1: जी बिल्कुल,
3: हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम सब अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: बिल्कुल, अब मुझे समझ आया कि सेहत ही सबसे बड़ा धन है, इसे बनाए रखें, सही जानकारी लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए सेहत सही लाभ कही के साथ।
4: मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह। सो जैसा कि आप जानते हैं, स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर सुनो शारदा 90.8 FM पर एक खास कार्यक्रम चल रहा है, सेहत सही लाभ कई। इसका उद्देश्य यही है कि टीबी को हराना और देश को जिताना है। इसमें हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सुनो शारदा की टीम को मरीजों से मिलवाया, उनके इंटरव्यू दिलवाए, निक्षय मित्र के बारे में बताया और समय समय पर FM के साथ मिलकर टीबी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और श्रोताओं तक पहुंचाया। देखिए, मेरा टीबी के मामले में फिर से यही संदेश है कि अगर टीबी को हम हराना चाहते हैं तो अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज द की फॉर दैट। तो मैं ये कहूँगा कि आप लक्षण हैं अगर आप, तो आप उसको छुपाएं नहीं, और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी को, आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में किसी को हैं, तो ये हम सब लोगों का भी फर्ज बनता है, इसमें कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है कि उसको लेकर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में जाएं। अब जैसे मैंने कहा कि अभी अर्ली डायग्नोसिस, मतलब शुरुआती जब लक्षण कम हैं और जब हम अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या सीटी स्कैन कराते हैं तो हम देखते हैं कि लीजन बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसे में कई बार चीज़ें पकड़ में नहीं आती हैं स्पुटम वगैरह की जांच में, तो उसके लिए कुछ आधुनिक यू कैन की फैसिलिटीज़ जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी, कोई छोटा सा लीजन है तो वहीं जिसको दूरबीन वाली जांच भी बोलते हैं वहीं से धुल के बलगम को निकालना और उसमें जांच कराना, या फिर कई बार फेफड़ों के बाहर में झिल्लियों में पानी भर जाता है तो उसमें थोरेकोस्कोपी अल्ट्रासाउंड से निकालना उसकी जांच करना। तो एक तो ये सभी सुविधाएं जैसे ब्रोंकोस्कोपी, थोरेकोस्कोपी, यहाँ तक कि डायग्नोसिस बनाना सिंपल टीबी की, एमडीआर टीबी की, और इन सभी का ट्रीटमेंट चाहे वो सिंपल टीबी हो या एमडीआर टीबी हो सरदा हॉस्पिटल में उपलब्ध है, निःशुल्क है उसकी जाँच भी, और किसी भी तरह की टीबी का इलाज भी, चाहे वो सिंपल टीबी है जिसको हम सेंसिटिव टीबी बोलते हैं या एमडीआर टीबी है या एक्सडीआर टीबी है, इन सभी का डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे आपको उपलब्ध है शारदा हॉस्पिटल के अंदर में। थैंक यू।
0: अभी आप सुन रहे थे 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले एपिसोड में फिर से आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
0: श्रोता संवाद। आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम के विशेष रेडियो संस्करण श्रोता संवाद में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत। श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद उमंग कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। श्रोताओं, आज मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर राजेंद्र पाल। आप CIET NCERT में प्रोफेसर हैं और मीडिया निर्माण विभाग के अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका उमंग कार्यक्रम के विशेष रेडियो संस्करण में मैं श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: धन्यवाद अजीत जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक खास सवाल है, वो ये है कि हमें श्रोता संवाद कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। किसी भी संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है संवाद बनाए रखना। सबसे पहले मैं उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोता मित्रों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फोन और ईमेल के द्वारा हमसे लगातार संवाद बनाए रखा।
0: आपने बिल्कुल सही कहा कि परस्पर संवाद संबंधों को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। श्रोताओं, उमंग प्रसारण में श्रोता संवाद प्रसारित करने का हमारा तात्पर्य है आपकी हमारी सीधी बात। कुछ आप कहें, कुछ हम कहें, कुछ आप पूछें और कुछ हम बताएं, कुछ हम पूछें और कुछ आप बताएं, है ना? क्योंकि हमें शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाने होते हैं, तो कई बार संभव है कि आपका नाम रह जाए। तो श्रोता संवाद में हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन के प्रसारण में जो नाम रह जाते हैं उन्हें हम शामिल करें। तो डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं श्रोताओं के पत्रों से।
2: बिल्कुल।
0: पहला पत्र हमें मिला है बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका पंजाब से। लिखने वाले हैं अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा। आप लिखते हैं, रेडियो के साथ उठते हैं, इसी के साथ सोते हैं, जब सुनते हैं नाम अपना तो बहुत खुश हम होते हैं। कभी फरमाइश पूरी ना हो तो आपा जरा सा खोते हैं, हमारा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ जनाब, हम रेडियो श्रोता हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके कवितापूर्ण संदेश के लिए। सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, कितना उत्साह है हमारे इन श्रोता मित्रों में।
2: जी, हम तो आपको यही कहना चाहेंगे, किसी उत्साह से सुनते रहिए हमारा उमंग कार्यक्रम।
0: जी,
2: और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों को परिवार सहित यह कार्यक्रम सुनने के लिए जरूर प्रोत्साहित कीजिए।
0: जी हाँ,
2: हमें संदेश भेजकर यह भी बताइए कि हम अपने कार्यक्रम में और अधिक निखार कैसे ला सकते हैं।
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, ये बहुत जरूरी है और हम श्रोताओं से भी अनुरोध करेंगे कि अवश्य हमें बताएं और हम क्या करें कि हमारा कार्यक्रम और निखर कर आपके लिए प्रस्तुत हो। श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आपके लिए हम लेकर आते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। इसमें होती हैं कहानियां, इसमें होते हैं नाटक, गीत, संगीत और भी बहुत कुछ। सर, अगला पत्र हमें मिला है करण बिंद का। आप महाराष्ट्र से हैं और आप लिखते हैं, मैं नवीं कक्षा का छात्र हूं और आपका उमंग कार्यक्रम प्रतिदिन सुनता हूं। आजकल आपके कार्यक्रम में जो श्रृंखला समाचार पत्रों पर चल रही है मुझे काफी पसंद है। आपके सभी कार्यक्रम ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर होते हैं।
2: करण जी, पत्र भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप विद्यार्थी हैं, खूब मन लगाकर पढ़िए और उमंग कार्यक्रम भी सुनते रहिए।
0: बिल्कुल।
2: आपने लिखा है कि आपको हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम निवेदन करेंगे कि स्कूल में अपने सहपाठी मित्रों को भी उमंग कार्यक्रम के बारे में जरूर बताइए।
0: जी हाँ, आप जरूर बताएं अपने मित्रों को भी। डॉक्टर साहब, अगला पत्र हमें मिला है गांव निपनिया, तहसील ब्योहारी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं अश्विनी मिश्रा जी। आप लिखते हैं, आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे को कार्यक्रम से बहुत प्रेरणा मिलती है और वह कोई भी कार्यक्रम मिस नहीं करता। मुझे महान रसायन शास्त्रज्ञ थॉमस एल्वा एडिसन पर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। ऐसी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमें जानकर अच्छा लगा कि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और खास करके थॉमस एल्वा एडिसन पर आपको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी मिश्रा जी। अगला पत्र हमें मिला है ग्राम बंगला मटिया बालोद छत्तीसगढ़ से, शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे का। आप लिखते हैं, आपका रेडियो कार्यक्रम उमंग मन को उमंग से भर देता है। इसमें महत्वपूर्ण बातों और विषयों का समावेश किया जाता है। कार्यक्रमों में अजब गजब महादेशों की जानकारी, संविधान में उल्लेखित भाषाओं की चर्चा, इन्हें जानिए आदि, और अब होनहार बच्चों के बारे में बताया जा रहा है। भाषा विज्ञान, चिकित्सा, स्वास्थ्य जैसे विषयों की कठिन बातों को भी इतने सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि सुने बिना रहा नहीं जाता। तो शिक्षाप्रद सुरुचिपूर्ण प्रसारण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सदैव यही प्रयास रहता है कि हमारे कार्यक्रम न सिर्फ शिक्षाप्रद लेकिन मनोरंजक भी हों। इसी प्रकार संदेश भेजते रहिए, आपके संदेशों से हमें प्रेरणा मिलती है और मनोबल बढ़ता है।
0: डॉक्टर साहब, प्रतिदिन हमें ईमेल और फोन पर श्रोताओं के बहुत सारे संदेश मिलते हैं।
2: बिल्कुल,
0: हमारे पास पत्रों की भरमार है। कुछ और हमारे श्रोता मित्रों के नाम इस प्रकार से हैं: गुजरात से महादेव हरिभाई देसाई, दिल्ली से रेशमा और शकीला अंसारी, मेन रोड तेल्हारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, ठियोक शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, और डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का गजभिये और तन्मय गजभिये। साथ साथ हमें संदेश मिला है पीपर पारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर का। डॉक्टर साहब, कुछ और संदेश हमारे पास
2: है? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए, सभी के नाम लेना आवश्यक है
0: जी, और हमारे श्रोता भी इसके द्वारा बहुत ही प्रोत्साहित अनुभव करेंगे। कुछ पत्र और हमारे पास हैं: सत्रोड खुर्द हिसार हरियाणा से पवन और प्रिंस, और साथ में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूजा पटेल। कुछ और पत्र हमारे पास आए हैं: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबू राम जयपाल, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल दिवांगन, कौशल्या दिवांगन और हेमलता दिवांगन। और अंतिम संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। श्रोताओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब आपके लिए कुछ जरूरी बातें जो आपसे हम करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक परिदृश्य में बहुत से सुखद परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से एक है NCERT की नई पाठ्य पुस्तकें। हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि इन नई पाठ्य पुस्तकों में नवीनता क्या है।
2: जी अजीत जी, NCERT की पुस्तकें नई हैं तो उनमें बहुत कुछ नया भी है।
0: जी,
2: पहली बात, गुणवत्तापूर्ण छपाई और रंग बिरंगे आकर्षक चित्र। बच्चे इन पुस्तकों को जरूर पसंद करेंगे।
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, ये बात तो है, मैंने भी इन पुस्तकों को व्यक्तिगत रूप से देखा है।
2: और दूसरी बात, इन नई पुस्तकों में दी गई रोचक कहानियाँ चित्रों उदाहरणों में भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। NCERT की नई पुस्तकों का उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना, समस्या समाधान, समन्वय और सहयोग जैसे 21वीं सदी के कौशलों को विकसित करना है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और मेरे मन में आता है, और वो ये है कि NCERT की नई पाठ्य पुस्तकें आज के या आधुनिक संदर्भ में कहाँ तक प्रासंगिक हैं?
2: अजीत जी, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन नई पुस्तकों की सामग्री और अवधारणाएं समसामयिक विषयों और आज समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए बहुत अधिक प्रासंगिक हैं।
0: जी,
2: ये विद्यार्थी केंद्रित हैं, पुस्तकें अत्यधिक रुचिकर और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए मित्रवत भी हैं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैंने और एक बात सुनी है, वो ये है कि ये पुस्तकें पुरानी पुस्तकों की तुलना में ज्यादा गतिविधि आधारित हैं। क्या ऐसा है?
2: जी, इन पुस्तकों में पाठ्य सामग्री के अलावा अभ्यास गतिविधियां भी दी गई हैं। इसलिए ये पुस्तकें बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों के बारे में। आपको और एक खास बात बता दें, और वो ये है कि कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और छठवीं की हमारी नई पाठ्य पुस्तकें अब NCERT ऑफिशियल YouTube पर ध्वनि पुस्तकों के रूप में भी उपलब्ध हैं।
2: जहां तक पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता का प्रश्न है, आपको हम सूचित करना चाहते हैं कि हाल ही में एनसीईआरटी ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ एक अनुबंध किया है, इसलिए अब आप यहां से भी अपनी पाठ्यपुस्तकें मंगा सकते हैं। ये पुस्तकें आपको बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अविलंब मिल जाएंगी।

0: तो श्रोता मित्रों, सुना आपने, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि अब NCERT की पुस्तकें मंगाने में आपको असुविधा और विलंब का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं एक विशेष जानकारी। श्रोता मित्रों, मनोदर्पण के बारे हम उमंग कार्यक्रम में अक्सर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं या अभिभावक हैं, विशेषकर यदि आप विद्यार्थी हैं और यदि आपको पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है, जैसे
1: कि पढ़ाई में मन नहीं लगना, प्रश्न पूछने या परीक्षा देने में डर लगना, सहपाठियों के साथ किसी प्रकार की समस्या का होना या पढ़ाई में आत्मविश्वास का न होना, पाठ को ठीक से याद नहीं कर पाना या अध्ययन को व्यवस्थित करने में समस्या का होना, जैसी किसी भी समस्या या किसी प्रकार की भावनात्मक समस्या का यदि आप सामना कर रहे हैं, तो NCERT द्वारा संचालित मनोदर्पण फोन इन मंच आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि इसके द्वारा आपको सुविधा मिलती है कि आप NCERT के शिक्षा और मनोविज्ञान के विशेषज्ञों से फोन पर सीधी बात करके अपनी समस्या बता सकते हैं और मनोपरामर्श ले सकते हैं।
0: जी,
1: आपको मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सारे परामर्श इस फोन की सेवा द्वारा मिल जाएंगे और आपको सचमुच इस फोन इन सेवा से लाभ होगा।
0: जी हाँ श्रोताओं, इसी प्रकार से सहयोग भी एक वीडियो मंच है जिसमें आप विशेषज्ञों से सीधे जुड़ सकते हैं और उनसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सहयोग वीडियो परामर्श मंच में आप अपनी समस्याओं को भी स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। तो सहयोग और मनोदर्पण का हेल्पलाइन नंबर नोट कीजिए, नंबर है 8448440632। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 8448440632। और हाँ, उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने के लिए हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ साथ आप हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लें। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रोफेसर राजेंद्र पाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और NCERT से संबंधित उपयोगी जानकारियों को साझा करने के लिए। तो अब अपने मित्र अजीत और प्रोफेसर राजेंद्र पाल को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम और कार्यक्रम का शीर्षक है
2: तीन कछुए।
3: एक मर्तबा का जिक्र है कि तीन कछुए पानी में रहते रहते थक गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए, जहां देवता रहते हैं, जहां हर वक्त शांति और सन्नाटा रहता है, जहां समंदर जैसे तूफान नहीं आते। ये सोचकर तीनों कछुए पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ अपने खाने का बहुत सा सामान लिया। उनका सफर बहुत लंबा था, क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर ये कि कछुए जरा रेंग कर भी तो चलते हैं। मगर ये तो आप जानते हैं कि कछुए बड़े मुस्तकिल मिजाज होते हैं। आपने सुना होगा कि एक बार एक कछुए ने अपनी मुस्तकिल मिजाजी से एक खरगोश को दौड़ में हरा दिया था और लोगों को ये सबक दिया था कि आदमी भी चाहे तो मुस्तकिल मिजाजी से अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये तीनों ही कछुए पहाड़ की तरफ चल पड़े। चलते रहे, चलते रहे। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झंकार, लेकिन वो कछुए भी धुन के पक्के थे। वो हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। बिलाखिर उनको पहाड़ दिखाई दिए, जिनकी चोटी बर्फ से ढकी हुई थी। उनको यहां पहुंचते पहुंचते बीसियों साल गुजर गए थे। इतने दिन के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई थी, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक बहुत अच्छी जगह पसंद की और सोचा कि यहां कुछ दिन आराम करें और इस शांति के स्थान का कुछ मजा लूटें। उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई। हवा भी हल्के हल्के चल रही थी। यूं तो सर्दी का जमाना था, लेकिन कछुए की खाल इतनी मोटी और इतनी सख्त होती है कि फौलाद ही इसका मुकाबला कर सकता है। इसलिए इसमें सर्दी का असर नहीं होता। बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह अपनी मोटी फौलाद जैसी खाल में छुपा लेते और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हवा कितनी ठंडी है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तब उन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पानी कैसे पिएंगे। फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो। उनकी आदत तो समंदर का पानी पीने की थी, उससे ही उनका खाना हजम होता था। तीनों कछुए सोच में पड़ गए।

0: उनकी कुछ समझ में ना आया कि क्या किया जाए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर एक दूसरे से कहने लगे। बड़ा कछुआ बोला,
1: मंझले कछुए, तुम जाओ और समंदर से जाकर पानी ले आओ, फिर इत्मीनान से बैठकर खाएंगे।
0: मझला कछुआ बोला,
2: मेरी तो राय ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए, वो इस वक्त भी खासा चुस्त तो चालाक मालूम होता है। मैं तो इस वक्त बहुत थक गया हूँ।
0: छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की, मगर वो दोनों उसके पीछे पड़ गए। और उसकी एक ना चली। आखिर मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वो बोला,
3: मैं चला तो जाऊं, मगर मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतजार किए बगैर खाना चट कर जाओगे, और जब मैं आऊंगा तो उस वक्त मुझे खाना भी मिलेगा तो वो भी झूठा होगा।
0: दोनों कछुओं ने कहा,
1: अरे ये कैसे हो सकता है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे।
0: छोटा कछुआ संजीदगी से बोला,
4: जी हाँ जरूर करोगे,
3: मुझे तो यकीन है कि तुम हरगिज हरगिज मेरा इंतजार ना करोगे।
0: मगर दोनों कछुओं ने बड़ी खुशामद की। और उससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम न आओगे हम खाने में हाथ न डालेंगे। आखिरकार मजबूर होकर छोटा कछुआ चला गया।

0: बाकी दोनों कछुए बैठे इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, 40 साल गुजरे, 50 साल गुजरे, यहां तक के 100 साल गुजरे। 100 साल गुजर गए मगर छोटे कछुए को न आना था न आया। अब तो उन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया। उन दोनों को यकीन हो गया कि जरूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है, वरना कोई वजह नहीं थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर ना आ जाता। उन्होंने सोचा कि
1: अब ज्यादा इंतजार करने से कोई फायदा नहीं।
2: अगर उसको आना होता तो अब तक आ जाता।
0: आखिर भूख से बेकाबू होकर उन दोनों कछुओं ने खाने में हाथ डाला। अभी उन्होंने खाना खाया भी न था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से कूदता हुआ आया और बोला,
1: मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज हरगिज मेरा इंतजार ना करोगे। मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए तो मैं गया ही नहीं था। यही बैठा हुआ देख रहा था।
0: दोनों कछुए भौचक्का रह गए। लेकिन कहते तो क्या कहते।
3: 3 कछुए।
4: तो इस लोक कथा के बाद अब आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा समय यहीं समाप्त होता है। तो अजीत
5: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें? वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है? राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और ये कारवां बनता गया। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन हमेशा जो गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं सिर्फ अपने सुनो शारदा 90.8 FM पर। ये है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का मतलब यही कि यहाँ पर ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हर रोज हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, और हर रोज सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। चलिए जनाब, आज कुछ खास है। जब मैंने समुदाय का जिक्र किया है तो जाहिर सी बात है कि आपकी बातें होंगी, हमारी बातें होंगी। शारदा विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है तो यहाँ पर स्टूडेंट की भी बातें होंगी। समुदाय यानी कि समुदाय जोड़ने का काम करता है। समुदाय जहाँ एक छत के नीचे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग कल्चर है, उस कल्चर के बीच में जब हम जाते हैं, हमारे टीचर जाते हैं, प्रोफेसर जाते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि इस कार्यक्रम को हमने एक नाम दिया है और जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नाम दिया है, राबता। राबता यानी कि एक जुड़ने का जरिया, कम्युनिटी कनेक्ट के जरिए समुदाय को जोड़ने का ये सफर है। सफर है तो जाहिर सी बात है कि इस सफर में कुछ हम सफर भी होंगे। जी हाँ, कुछ हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बड़ी ही शख्सियत, बहुत खूबसूरत शख्सियत आज हमारे बीच में है। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, उनका परिचय मैं आपको देना चाहूंगा। मेरे बीच में है एडवाइजर हैं आप कम्युनिटी कनेक्ट शारदा विश्वविद्यालय से, साथ ही साथ शिबानी फाउंडेशन के आप फाउंडर हैं, आप हैं डॉक्टर बर्नाली खरा मैम। तो मैम सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन जी, थैंक यू एवरीवन जिसको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है 90.8 FM से। और मैं इस कम्युनिटी कनेक्ट के जरिए मैं कुछ बात अपना शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे अपने स्टूडेंट को, अपने एक और कम्युनिटी को जो जहाँ से सुन रहा है मेरी आवाज़, उन तक मेरी आवाज़ पहुँचना चाहिए ये समुदाय को हमें ऊपर जाने के लिए।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात दोस्तों। ये जो सफर है यूं ही चलेगा, कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें कह दी हैं कि इस सफर को हम आगे लेकर जाएंगे और हम आप ही की बातें करेंगे। और मेरे साथ मेरे जो दूसरे खास मेहमान हैं, आप हैं कम्युनिटी कनेक्ट हेड डॉक्टर निमी अग्रवाल मैम। तो मैम आपका भी सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, ये एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। शारदा रेडियो जो कि वॉइस ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी है, जिसके माध्यम से आज हम बातचीत करेंगे कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में।
0: और तीसरी जो शख्सियत है उनका मैं नाम अभी नहीं लूंगा, मैं तब बुलाऊंगा उनको जब हमारी उनसे खुद डायरेक्ट बात होगी। तो ये जो यू कहें ना कि पर्दे में रखा हुआ है उस खास मेहमान को आप जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, थोड़ा तो आपके दिमाग को जोर देना ही चाहिए। चलिए आपके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो अभी थोड़ा वेटिंग में चल रही है। लेकिन कम्युनिटी कनेक्ट का जब हमने जिक्र किया है तो जिक्र हो रहा है एक समुदाय का, जिक्र हो रहा है आपकी बातों का, जिक्र हो रहा है UGC क्या कहती है, विश्वविद्यालय क्या कहता है, किस क्राइटेरिया के तहत हम लोग मैदान में जाते हैं, स्टूडेंट्स भी मैदान में जब जाते हैं कि तो उनकी जो एनर्जी है वो क्या रहती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, यही सारी बातें करने के लिए मेरे साथ मेरे एक एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ विशेषज्ञ जुड़े हुए। तो डॉक्टर बर्नाली खरा मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में आपने क्या अब तक देखा है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को बता सकें तो प्लीज़ इसके बारे में बताएं।
1: मैं कम्युनिटी कनेक्ट का एडवाइजर भी हूँ और मेरा अपना फाउंडेशन भी है, शिवानी फाउंडेशन
0: जी।
1: तो मैं वहाँ पे ऐसे कम्युनिटी से मिलती हूँ जहाँ पे आपको और कुछ नज़ारा दिखेगा, वहाँ का लोगों का प्रॉब्लम, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, मुझे लगता है मेरे साथ साथ सबको वहाँ तक पहुँचना चाहिए
0: जी।
1: और मेरा अपना एक स्कूल भी है वहाँ पे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन के लिए, तो वो स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं अभी, उनको फ्री में मैं सारा एडुकेशन देती हूँ वहाँ पे। और मुझे लगता है ये बच्चों भी उस दुनिया तक पहुँचना चाहिए जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं
0: जी। आप जो

0: कर रही हैं वहाँ की जगह है कहाँ?
1: ये हमारे एरिया में है, ज्यादा दूर नहीं है, ये इस शहर से थोड़ी सी दूरी में
0: ग्रेटर नोएडा
1: के पास में कासना एरिया है।
0: हाँ जी,
1: इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर आते हैं बाहर से, जो माइग्रेंट लेबर है ज्यादातर, तो उनका एक एक घर का एक एक कहानी है।
0: नहीं मैं समझ सकता हूँ, ये सक्सेस स्टोरीज हम बोलते हैं, उसको नजदीकी से जब जानेंगे समझेंगे तो चीजों को समझ में आएगा। तो क्या क्या स्टोरीज वो रहती हैं, थोड़ा सा अगर हम संक्षेप में बताएं।
1: वो लोग ऐसे दुनिया में जीते हैं, उनके लिए खाना ही सब कुछ है, उससे आगे वो लोग सोच ही नहीं सकते जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और मुझे जो लगता है, जो शिक्षा सही से नहीं मिलेगा तो इसको आगे नहीं ले जा सकते। ये समुदाय को आगे जाने के लिए मुझे लगता है मतलब शिक्षा बहुत जरूरी है।
0: बेशक मैम, और इसीलिए कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विद्या आपको पात्रता लेकर आती है, विद्या आपको धन देती है, धन से धर्म आता है और धर्म से सुख आता है। तो हम सब यही कामना करते हैं कि सब पढ़ें, आगे बढ़ें। तो इसके बारे में मैम हम जरूर चर्चा भी करेंगे, और अगर आप हमें अलाउ करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आपके शिबानी फाउंडेशन जरूर जाना चाहेंगे, लोगों से मिलना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ तभी जाकर हमारा है,
1: मेरे साथ साथ इस अंधेरे में एक एक दिया कभी भी जलाएंगे सब लोग, तो और आगे बढ़ जाएंगे, हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं।
0: ज्योत से ज्योत जलाते चलो, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। हमारे साथ जो हमारे दूसरी गेस्ट हैं, आप हैं डॉक्टर निमी अग्रवाल, जो कि हेड है कम्युनिटी कनेक्ट की। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: तो आप भी कुछ हमें बताएं कि जब आप मैदान में जाते हैं तो किस तरीके के लोगों से आप मिलते हैं, कम्युनिटी कनेक्ट का जो एक उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य रहता है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को आप इन्वॉल्व करती हैं?
2: बिल्कुल गगन, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो क्या चैलेंजेस या क्या बच्चे हमारे ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना यहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि कम्युनिटी कनेक्ट है क्या
0: जी,
2: और शारदा विश्वविद्यालय का क्या उसके तरफ रुख है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, ये जो एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक मिशन है।
0: क्या बात,
2: एक मिशन है जो शारदा यूनिवर्सिटी अपना चलाती है कम्युनिटी कनेक्ट के नाम से
0: जी।
2: राइट, तो बेसिकली क्या है कि जो इसका जो बेसिक फिलॉसफी है कम्युनिटी कनेक्ट की, वो ये है कि जो हम सीखते हैं ना वो सिर्फ हमारे काम आता है, सोसाइटी के नहीं, लेकिन हम कम्युनिटी कनेक्ट के तहत बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं, उनको अवेयर करते हैं अबाउट द कम्युनिटी। राइट, तो सेंसिटाइज और अवेयर करने से उससे उनको है ना सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं, ताकि उनको सोसाइटी के जो और चैलेंजेस हैं वो भी उनको समझ में आए। तो यही सोच जो है शारदा कम्युनिटी कनेक्ट के हैं, ये एक ऐसा ब्रिज है जो नॉलेज को एक्शन में बदल देता है। राइट, केवल वो नॉलेज हमारे अपने पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्हाट वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। राइट, और इसमें यूजीसी भी यही कहता है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो टीचिंग रिसर्च करते ही हैं, लेकिन व्हाट दे आर सर्विंग बैक टू द सोसाइटी। तो उसी के तहत भी ये कम्युनिटी कनेक्ट हमारा पर्पस सॉल्व करता है, उसको सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना, उसके बारे में बात होती है। ठीक है ना, उसके अलावा क्या है कम्युनिटी कनेक्ट का जो मतलब है वो ये है, यूनिवर्सिटी और समाज के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाना। राइट, क्योंकि जब किताबों की लाइंस ना जिंदगी की लाइन से मिलती है ना, तभी बनता है एक असली एजुकेशन। ये एक फंडामेंटल फिलॉसफी है,
0: नहीं, बिल्कुल आपने
2: कि हाँ नॉलेज को ना, जो किताबों की नॉलेज है उसको हमें जिंदगी से जब तक नहीं जोड़ेंगे ना, तो असली एजुकेशन जो है ना वो किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, क्लासरूम तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उन्हें हमें पंख देने हैं, उन्हें हमें समाज से जोड़ना है। और आजकल अगर आपको पता ही है जेन जी के हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो बहुत जरूरी है कि उन्हें हमें समुदाय से कनेक्ट करें।
0: देखिए, जो आपने कहा कि जेन जी का जिक्र किया, मैं समझता हूँ आप समझ रहे हैं, एक नया वर्ड है किसी के लिए, तो थोड़ा अगर आप इसको विस्तार दे सकें तो आप मुझे बताइए।
2: जेन जी मतलब बेसिकली क्या है, जो जनरेशन है उनकी बॉर्न डेट और ईयर यूथ, तो दोज हु हैव बॉर्न आफ्टर 2010 और 2014 उनको जेन जी कहा जाता है।
0: सही जवाब।
2: तो जो है उन बच्चों का सोचना और हम लोग सोचने में थोड़ा फर्क है,
0: जिसको आम भाषा में हम सुनते हैं कि एक जनरेशन गैप आ गया,
2: जनरेशन गैप,
0: आपकी सोच पुरानी है, हम आज का यूथ है। तो मैम शुक्रिया आपने इस पर रोशनी डाली, क्योंकि कई लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी न हो। लेकिन मैं एक और बात आपसे थोड़ा सा जानना समझना चाहूंगा कि जब लोगों को आप एकत्रित करते हैं, जब जानकारी न हो, लेकिन मैं एक और बात आपसे थोड़ा सा जानना समझना चाहूंगा कि जब लोगों को आप एकत्रित करते हैं, जब हम भी मैदान में जाते हैं कम्युनिटी कनेक्ट के बीच प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि एक बार की एक मीटिंग में कोई क्राउड हमारे सामने नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं डर होता है, घबराहट होती है, उनको ये भी लगता है कि आप अपना काम कर रहे हैं हमारे लिए क्या। तो नो डाउट एक फ्यूचर प्लानिंग है। अब यहाँ जो प्लानिंग को लेकर चलते हैं, नो डाउट कि शिबानी फाउंडेशन आप अपना काम कर रहे हैं, शारदा विश्वविद्यालय भी अपना काम कर रहा होता है, सिर्फ एक मीटिंग में वो काम मुझे लगता है सफल नहीं हो पाता होगा जो हमारा उद्देश्य रहता है। तो जो आप मैदान में उतर रहे हैं, तो ये जो चैलेंजेस की बात है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं तो किस तरीके की क्राउड मिलता है, कैसे लोग मिलते हैं, क्या उनके सवाल होते हैं।
2: हाँ, चैलेंजेस तो बहुत हैं, चैलेंजेस वन वे नहीं है, टू वेज हैं। एक तो चैलेंजेस यही है हमारे सामने कि बच्चों को उस चीज को समझाना कि हम उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो परसेप्शन उनके दिमाग में, वो विजन उनके दिमाग में सेट करना। दूसरा, जहाँ हम कम्युनिटी में लेके जा रहे हैं उनकी वो आइस ब्रेकिंग करना कि जहाँ वो बोलें कि हाँ ये इश्यूज हैं। जनरली जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं और जो अपने काम कर रहे होते हैं, वो इतना समय देना नहीं चाहते कि जहाँ वो बातचीत करें और अपनी प्रॉब्लम को जाते ही एकदम से ओपन अप करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमें उनसे एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मिलना पड़ता है, एक विश्वास उनके साथ कनेक्ट बनाना पड़ता है, विश्वास डेवलप करना पड़ता है, ताकि वो अपनी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो हमको शेयर कर सकें।
0: मेरे साथ डॉक्टर बर्नाली खरा मैम हैं दोस्तों। तो मैम मैं इस संबंध में आपके व्यूज़ भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और मैं समझता हूँ फाउंडेशन फिर अपना काम करता है। लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं, आप एजुकेशन उनको दे रहे हैं, उनको यूँ कहें कि एक वर्कशॉप आयोजित कर दे रहे हैं, या कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि शारदा विश्वविद्यालय उन स्टूडेंट्स को लेकर आता है और यहाँ पर एक छोटी छोटी वर्कशॉप भी हो रही होती हैं। तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे जो मैम ने अभी बातें रखी?
1: नहीं, या तो स्टूडेंट के लिए कम्युनिटी कनेक्ट मुझे जो लगता है सिर्फ चैप्टर में नहीं है, ये प्रैक्टिकल ग्राउंड में उनको जाना चाहिए, उनको समझना चाहिए इस दुनिया के बाहर और लोग कैसे जीते हैं, उनका इकोनॉमिक कंडीशन, उनका हेल्थ कंडीशन, उनका हर दिन का कैसे चलता है, वहाँ रोजगार है, कैसे वो मैनेज करते हैं, आप कितना हैप्पी रहते हैं वो लोग, ये सब चीज उनको शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया से वो दुनिया फर्क है,
0: बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हमने देखा है कि वो झुग्गी झोपड़ी में ही रह रहे होते हैं।
1: हाँ।
0: शायद अगर जब बदरा आते हैं तो वो दुआ करते हो कि ये पानी ना बरसे, हाँ, अगर पानी बरस गया तो मेरी झोपड़ी का क्या होगा। तो ये बहुत चैलेंजेस है।
1: मैंने बोला पहले भी, उनके लिए बस फूड ही सब कुछ है, बस खाने पीना जीना, बस उससे आगे कुछ सोच ही नहीं सकते ऐसे ही। और उनके पास बहुत सारे जिम्मेदारी है, बीमार, हर घर का एक एक स्टोरी होती है वहाँ पे।
0: बेशक, बेशक।
1: आप जितना दिन जाएंगे, एक एक घर जाएंगे, तो एक एक स्टोरी डेली निकाल के आएगा वहाँ पे।
0: बेशक मैम।
1: तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे जाने।
0: मैं ये कहूँगा कि मैं खुलकर आपको एक अपनी बात रख रहा हूँ कि आप हमें निमंत्रण दें, हम आपके साथ चलना चाहेंगे, ताकि हम इस तरह की स्टोरीज को कवर कर सकें और अपने रेडियो FM पे लेकर आ सकें, जो शिबानी फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आपको ऐसे मिलते हैं। तो अगर आप कहें तो दोस्तों हम तीसरे मेहमान को बुला लें, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं। अगर हमारी बातें खत्म हो गई तो वो नाराज भी हो सकती है और हो सकता है खफा भी हो जाए, लेकिन हम अपने मेहमान को खफा नहीं करेंगे क्योंकि बातों का सिलसिला बहुत ज्यादा है, बहुत अथाह भंडार है, खजाना ही खजाना है हमारे पास। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान हैं और आपके साथ मैंने बहुत सारे शोज किए हैं, आपके साथ ग्राउंड में मैं गया हूं, तो आप हैं मेरे साथ, आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर की, डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार गगन, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपने जैसा कहा कि जो रेडियो FM और हमने पहले भी कई शो करे हैं अपने एक्टिविटीज़ को लेकर, और यहाँ पे हर बार आना एक नया अनुभव रहता है।

0: और सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को स्नेहपूर्ण नमस्कार करना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी गगन और उनकी टीम का, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान करा।
1: तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऐसा नहीं था कि मैं आपको बुलाता नहीं, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास सवाल नहीं है आपके लिए, मेरे पास सवाल अभी बाकी है। कह सकते हैं दोस्तों कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पठन पाठन की बातें हो रही हैं, ज़िंदगी को समझने की बातें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि विश्वविद्यालय की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। UGC अपना एक क्राइटेरिया बनाता है और उसके तहत, जैसे कि हमने कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहा होता है, शारदा विश्वविद्यालय अपना काम कर रहा है, और यही एक वजह है कि जब स्वास्थ्य का मैम ने जिक्र किया तो शारदा अस्पताल भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, उस चीज़ को भी हम नहीं भूल सकते हैं। तो मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मकसद है, इसके पीछे हमारी क्या सोच है, क्या विजन है। अभी मैम से मेरी बातें हो रही थी, चूँकि हमारे शारदा विश्वविद्यालय के जो चांसलर सर हैं वो क्या सोचते हैं उनके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मकसद है वो विश्वविद्यालय का क्या मकसद है, हम कहाँ तक पहुँचें, कहाँ तक जाएँ, उनको आगे तक भी लेकर आएँ, चाहे वो एजुकेशन की बात हो उनको यहाँ करिकुलम एक्टिविटीज़ की हो, बात हो हेल्थ की, तो कुछ और आप हमें बताएं।
0: जहाँ आपने ये सूत्र छोड़ा है, मैं वहाँ से इसको उठाती हूँ। जैसे आपने कहा कि शारदा विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय को अगर हम लेकर चले, और स्पेसिफिकली आज जो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो उनका जो एक मकसद है, और स्पेसिफिकली शारदा विश्वविद्यालय का, ना सिर्फ अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर बनाना है बल्कि अच्छे नागरिक बनाना है। तो वो जो एक स्पिरिट और जो एक फीलिंग ऑफ एबल सिटीजनशिप जो हम बात करते हैं, तो ये जो मकसद है उसका जो सीट है, ये उस चीज़ को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से है। और जैसे आप बात करें कि वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, UGC है और NAC है और अदर इस तरह की बॉडीज़ हैं, पर यहाँ पे दो चीज़ों का मैं आपके सामने जो है विवरण करना चाहूँगी कि दो चीज़ें जो बहुत महत्व रखती हैं आजकल के टाइम पर। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का मिशन
1: जी, वर्ष 2047 तक
0: जी, तो कुछ क्योंकि आप इसको एक गमले की तरह ले सकते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं, तो उस तरह का एक ब्रांच आउट हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो मिशन है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जेंडर इनइक्वालिटीज ना हो, जो असमानताएं हैं वो ना रहे, और सबको एक क्वालिटी एजुकेशन हम प्रदान कर पाए, राइट। और इनका जो जेनेसिस है, क्योंकि ये तार से तार जुड़ता जाता है, वो जाता है, मैं आपको लेके जाऊंगी 2016 1 जनवरी को, जहाँ पे UN ने 17 SDGs, जिसको हम बोलते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करी थी। तो जो हमारा, चाहे हम शारदा सोशल बिजनेस सेंटर की स्थापना की बात करें या हमारे कम्युनिटी कनेक्ट की बात करें, तो इन सब के जो तार हैं वो जुड़ते हैं हमारे भारतीय मिशन के साथ और हमारे वैश्विक मिशन के साथ, जहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों की बातें करते हैं।
1: जी जी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको विस्तार से हमें बताया, हमारे लिसनर्स तक बात पहुँचाई आपने, और मुझे एक नई चीज़ सीखने को समझने को मिली कि आपने जो मूल्यों की बात की, संस्कारों की बात की, वो कहीं ना कहीं आज गुम होती हुई नज़र आ रही है, और हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम एक भी विद्यार्थी को वो संस्कारों के साथ आगे लेकर जा पाएँ, तो निश्चित तौर पर उसका जो योगदान होगा वो हमारे देश में होगा। डॉक्टर बर्नाली खरा मैम, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, नैतिक शिक्षा को जब आप देखते हैं, तो कहाँ आप पाते हैं कि वो नैतिक शिक्षा जिंदा है या नहीं है, क्या हम उसको विश्वविद्यालय के माध्यम से आगे लेकर जा सकते हैं? हमारे यहाँ वर्कशॉप्स भी होती हैं, और जब आप ग्राउंड पर जाती हैं तो क्या आप महसूस करती हैं महिलाओं का वो दुख दर्द, क्योंकि बीइंग ए लेडी होने के नाते दो चीज़ें मैं आपसे समझना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप बताएं। नैतिक शिक्षा,
2: प्रधानमंत्री का जो मन की बात है
1: जी,
2: जो ये जो ब्रिज गैप क्लियर करना है, हमें गैप जो है उस सोसाइटी के साथ, इस सोसाइटी की, तो मुझे लगता है अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इस सोसाइटी के साथ उस सोसाइटी जब तक कनेक्ट नहीं होगा, SDG के तहत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसको कैसे कैसे एक एक गोल हम पूरा कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छा,
2: और
1: महिलाओं के क्या चैलेंजेस?
2: अच्छा, महिलाओं का महिला अभी तक रूरल एरिया में मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगता है, लोकल एरिया में मैं जब जाती हूँ उनके पास, अभी तक मैंने जो गांव विजिट किया हुआ देखा, किसी के पास अभी तक मोबाइल नहीं है।
1: जी जी,
2: ऐसे भी देखा है। मैं आगे एक स्टीचिंग सेंटर खोलना चाह रही हूँ, तो

0: उस गांव में हमने देखा है उनके किसी के पास अभी मोबाइल नहीं है। बोला यहाँ मोबाइल महिला के लिए नहीं है,
1: कहीं ना कहीं वो
0: अभी भी अंधेरा है ही वहाँ पे।
1: यानी कि पुरुष तो आगे बढ़ना चाहता है, महिलाओं को वो मोबाइल देते हुए भी डरते हैं।
0: हाँ, नहीं अभी तक वो देखा नहीं, वो सोच बदलना पड़ेगा। कोई पर जाके मैंने देखा है उनके पास ना आधार कार्ड मतलब एडिट ना हुआ है, शादी के बाद वो पुराना ही आधार कार्ड है उनके पास। हाँ, बेसिक चीजें सब नहीं, बाहर जाने नहीं देते हैं, अपनी बहू को बाहर जाने का भी मना है, बहुत सारे चीज मुझे
1: चैलेंजेस
0: लगता है।
1: जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो आ ही रहे हैं। पीस,
2: जैसा मैम ने कहा उसको आगे ले जाते हुए, कई बार हमें लगता है कि जैसे आपने कहा गगन कि ये मानसिकता की बात है, राइट, तो एक ये एक मेंटल ब्लॉक भी है। दूसरा मैं कहूँगी यहाँ पे खुद औरतों को भी अपना एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी
1: है।
2: तो हर बार हम दूसरे पक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते, जैसे अगर हम महिला और पुरुष की बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ एक उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जैसे जो हमारा शारदा सोशल बिजनेस सेंटर है वो महिला कारीगरों को साथ जोड़ के उनको बिहेवियरल ट्रेनिंग देता है कि कॉन्फिडेंस कैसे आपका बढ़े, आप कस्टमर से कैसे बात करें। और ये सारी जो महिलाएँ हैं माइग्रेंट वुमेन है और ये क्रोशे के काम में जो कढ़ाई होती है उसके काम में एंगेज है। तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि ऐसी मेरी एक महिला कारीगर से बात हो रही थी कि आप आइए हम शारदा में एक आपकी प्रदर्शनी लगाएंगे आपके काम की, जिससे आपके काम को एक पहचान मिलेगी। तो वो उनके पहले दिमाग में आया कि मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी और दूसरा कि मेरे बच्चों को कौन रखेगा। तो मैंने उनसे फिर सवाल करा कि ये काम तो आप अपने पति से पूछ सकती हैं, एक दिन वो शायद घर पे रह ले। बोले मैंने कभी पूछा ही नहीं उनसे, तो मेरी हिम्मत ही नहीं
1: हुई।
2: तो ये बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी महिला श्रोताएं सुन रही हैं, कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी बात दूसरे तक रखें। हम एक परसेप्शन के साथ चलते हैं कि शायद दूसरा हमारी बात समझता है और वो इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा, जहाँ की बात होती है कि हमने अपनी बात उन तक रखी नहीं है।
1: जी जी, इस बात को अगर हम यूँ समराइज करें तो ये बात निकल कर सामने आती है कि बात करेंगे तभी बात बनेगी। बड़े से बड़े मसलों का हल हो जाता है जब आप बात करते हैं, अदरवाइज आप घुट जाते हैं, आप परेशान हो जाती हैं। और जिस तरीके से मैम ने अपनी बात मन की बात हमारे साथ साझा की, तो मुझे लगा कि इस एक बात यही समझ में आई कि हमें उनको जगाने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता पूरी होती है एक कम्युनिटी कनेक्ट के माध्यम से, और यही एक उद्देश्य है कि हम लोगों के बीच में जाएं, स्टूडेंट्स को साथ लेकर जाएं, ताकि हम उनको बता पाएं, समझा पाएं, ताकि वो जान पाएं कि काश मैं भी कुछ मदद कर सकूं, काश मैं भी यहाँ जुड़ सकूं। हो सकता है उसके पास टैलेंट हो, वो गिटार अच्छा बजाता हो, क्योंकि जब बच्चे पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं तो हो सकता है वो गिटार भी सीखना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ शारदा विश्वविद्यालय का एक कर्तव्य NGO है मैम, वो भी बढ़ चढ़ कर काम कर ही रहा है। जब मैम, मैंने डॉक्टर बर्नाली खरा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस तरीके का रहता है, स्टूडेंट्स कैसे हमारे साथ जुड़ते हैं, या उनको जगाना पड़ता है कि नहीं बेटा आप चलो हमारे साथ?
0: नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टेड है। मैं 2-3 बार उसको लेके गई ऐसे गांव में, तो स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्टेड है। मैं नहीं बोलूँगी स्टूडेंट जानना नहीं चाहते हैं, और आने के बाद भी उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो मैंने कोई कोई स्टूडेंट को मैंने बोलते हुए देखा है, जो मैम ये दुनिया तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, मैं सोच रहा था जो मैं ही गरीब हूँ, लेकिन हमसे भी इतना गरीब लोग है, हम देख के मुझे अच्छा लगा ये सब चीज़ें।
1: और यही हमारा मकसद है कि उस चीज़ को, दुख दर्द को आप जाने समझें। और बड़ी खूबसूरत लाइन है कि मेरा गम कितना कम,
0: प्यार से समझाओ तो बच्चे भी समझ जाते हैं। ऐसे नहीं है, दुनिया बदलेगा जरूर।
1: क्या बात है, दुनिया बदलेगा जरूर, हम छोटे कदमों से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर मंजिल को पा ही लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई बात आपकी तरफ से छूट रही है मैम, तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज हम कार्यक्रम को आगे लेकर चलें।
2: अभी जो हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, उस उपलक्ष्य में, क्योंकि मैं भी एज ए वॉलंटियर, जैसे मैम ने कहा, शिवानी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो हम जो अपने श्रोता जो हमारे सुन रहे हैं, एक तो हम उनसे चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ें। हमारी वेबसाइट जो है वो www.shivanifoundation.com है। और दूसरा हम ये चाहेंगे कि हम एक, जैसे आपने कहा कि एक अकेला नहीं जो है वो काफिला बनता और लोग साथ में जुड़ते जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि इसमें हमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हमें सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनका सहयोग अगर किसी तरह से हमें मिल पाए, क्योंकि जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चों की बात हो रही है या हमारे बच्चे जब कम्युनिटी में जाकर उन लोगों की दुविधा देखते हैं, तो उस तरह के काफ़ी समस्याएँ हैं जो शायद रिजॉल्व हो सकती हैं, लेकिन शायद उस तरह का जो एक पहल है वो नहीं ली गई। तो
1: बहुत बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर कोई हमसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ेगा। 01204060205 ये हमारा नंबर है। ठहराव के साथ मैंने इसलिए बताया, कभी कभी मैं भी श्रोता होता हूँ तो जब रेडियो प्रेजेंटर के नंबर में फड़बड़ सुनता हूँ तो मेरे वो सर से ऊपर चला जाता है। यानी कि 120 40 60 205 के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेल के माध्यम से मेल जोल बढ़ा सकते हैं। 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप लोगों के लिए खुले हुए, आप कभी भी आइए, यहाँ का आप दौरा कर सकते हैं। तो मैम आखिर में मैं डॉक्टर निमी अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो हमें बता रही थी कि जो एक विजन है, जो एक सोच है हमारे चांसलर सर की, वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से कम्युनिटी कनेक्ट के माध्यम से शारदा विश्वविद्यालय को वो आगे लेकर जा रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं। प्लीज मैम,
3: जो हमारे ऑनरेबल चांसलर सर हैं श्री पीके गुप्ता जी, उनका विजन है, उनका इसी बात पर ज़्यादातर जोर रहता है कि यूनिवर्सिटी का असली काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि सोसाइटी के बीच जाकर उसका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है। उनका मानना है कि हर स्टूडेंट एक चेंज मेकर हो सकता है, बस उसे एक मौके की और सही दिशा की ज़रूरत है। उसके अलावा उनका ये भी मानना है कि जैसे मैंने बताया जेन जी, राइट, तो जेन जी के जो जो हैं, ये जनरेशन है, ये स्टूडेंट्स हैं आज, इनको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, हाउ डू दे सर्वाइव इन सच अ मीगर सैलरी, इतना कम पैसे में वो कैसे अपनी फैमिली को कैसे वो सर्वाइव कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि वो हमारा हर बच्चे को इस विषय में पता हो कि सर्वाइवल कितने कम में हो सकता है।
1: क्या बात है। इस बात को अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो उस विजन को हमारे वीसी सर मिशन बनाकर, हमारी टीम मिशन बनाकर आगे
3: बिल्कुल, हाँ,
1: सही
3: बिल्कुल,
1: बात कह दी,
3: बिल्कुल सही।
1: तो हंसते रहिए, आप भी मुस्कुराते रहिए, मेरे भी चेहरे पर हंसी आ गई कि आपने मेरी बात का समर्थन कर दिया। तो दोस्तों लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत। लोग कहते हैं कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, लेकिन मैं कहता हूँ कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना टेंशन देने की आवश्यकता, क्योंकि अगर आप किसी को टेंशन देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं ताना बाना बुन रहा होगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और जो मेरे साथ मेरे जो खास गेस्ट जुड़े रहे, मैं आप सबका बारी बारी दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। मेरे साथ जुड़ी रहीं, आप जुड़ी रहीं शिवानी फाउंडेशन की फाउंडर और एडवाइजर कम्युनिटी कनेक्ट शारदा विश्वविद्यालय से डॉक्टर बर्नाली खरा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई मैम।
0: थैंक यू गगन जी, थैंक यू सुनो सरदा 90.8 FM जो सुन रहा है, सबको मेरा धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम, और सब जुड़ जाइए शिवानी फाउंडेशन से एंड कम्युनिटी कनेक्ट से।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। साथ ही साथ डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम आपका भी धन्यवाद, डॉक्टर निमी अग्रवाल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाह रही मैम, इशारा करेंगे अगर मुझे कुछ कह रहा है, प्लीज मैम।
2: जी, मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगी कि जीवन में बहुत कठिनाइयां आती है, लेकिन सोहन लाल त्रिवेदी जी की दो लाइनें मुझे याद आ रही है
1: जी,
2: कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो इस चीज को, इस जज्बे को लेते हुए हम जीवन की कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में आए उसको हम पार कर सकते हैं, और जीवन को जैसे गगन ने कहा, एंजॉय करिए, कीप हेल्दी एंड कीप सेफ। थैंक यू।
1: थैंक यू मैम। डॉक्टर निमी अग्रवाल मैम आप भी कुछ कह दी।
3: गगन जी, द वॉइस ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का, और दिल से धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और ज़रूर दोबारा जल्दी हम मिलेंगे। धन्यवाद।
1: तब तक के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
4: हाय मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: और डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
1: आए पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
0: वो
1: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
2: क्या, क्या हो बेटिया?
3: डॉक्टर साहब
4: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
5: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
1: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
3: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
4: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
3: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
2: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
3: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
2: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
4: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन, सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ। लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है, या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए, और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है। लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा। और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, अगर हम बेहतरी की तरफ बढ़े, इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा। और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है, और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है, और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नाम, कहानियां बदल जाती है, लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म लें, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए, और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
3: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरु शारदा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8 FM@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM।
2: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: भाभी लो मिठाई खाओ।
2: अरे किस खुशी में?
1: सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
2: वाह, तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए हैं सब उसे।
1: ओहो भाभी, रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
2: अनीमिया?
3: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
2: ललिता लो मिठाई खाओ।
1: अरे वाह, रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
4: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं

0: और कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो।

लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग,
2: कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: The School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको, हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: मैडम यू कैन बी वेरी फंटा।
6: केटो डाइट का नाम सुना? आज से ये सब बंद और वो शुरू।
7: अरे बीबी जैसी पहले थी वैसी फिट हो जा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: तुम कर क्या रही हो तारा?
2: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह,

0: अक्षरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार। हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
0: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
2: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना बनाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
0: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
0: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं, हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं। और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
0: ये बात है, तो हम बच्चे भी मच्छरों से ठुशुम ठुशुम लड़ने के लिए तैयार हैं।
2: क्या कहा तुमने?
0: Kids want to know मिस मच्छर कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
2: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
0: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: ही होगा जवान, आऊंगी मैं वहां वहां।
1: चलो दोस्तों, बन जाओ टीम तारा, जहां भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
2: टीम तारा है भैया।
3: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
1: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
2: गुड बाय।

पर रात को, तब ये नहीं बचा पाएंगे अपने आप को।

जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार। बाय बाय।
2: हेलो मेरे बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
3: हेलो मेरे प्यारे दोस्त तारा।
2: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
3: ओ मुझे बुखार हो गया है।
2: अप्पा, टिंकू को बुखार हो गया है। तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
3: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
2: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
3: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूँ तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ, जल्दी आओ अब्बा। टिंकू, तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जाना जरूर जाना जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी, तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: मरना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से
0: बाय बाय।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद

0: मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं। विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामोनिशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: Yeah.

0: जब टीचर हमारी क्लास में अटेंडेंस लेते हैं और अगर कोई बच्चा मिसिंग होता है तो जब हम उसके बारे में पता करते हैं और अगर हमें पता चलता है कि उस बच्चे को बुखार है तो फिर हम तुरंत आशा से संपर्क करते हैं जो उसी गांव की होती हैं। वो आती हैं और हम उन्हें उन बच्चों के बारे में बताते हैं कि आप जाकर देखिए। फिर वो उनके घर जाती हैं, उनकी कंडीशन देखती हैं और फिर जैसा होता है वैसा वो उनको रेफर करती हैं।
1: चाहे कुछ भी हो मजबूरी,
2: चाहे कुछ भी हो मजबूरी,
1: मच्छरों से खुद को बचाना है,
2: मच्छरों से खुद को बचाना है।
1: दिमागी बुखार पर सीधा वार,
2: दिमागी बुखार पर सीधा वार,
1: सुरक्षित होगा हर परिवार,
2: सुरक्षित होगा हर परिवार।
0: बच्चों को निबंध के माध्यम से, भाषण शैली के माध्यम से जागरूक करते हैं और बच्चों को पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से भी जागरूक करते हैं और बच्चे उसे अपने घर जाकर के अपने अभिभावकों को बताते हैं।
3: मेरी बेटी स्कूल से जो सब सीख के आती है वो सब हम घर पे पालन करते हैं, जैसे कि हाथ धोना, गड्ढे में पानी इकट्ठा न रहने देना, मच्छरदानी लगाकर सोते हैं क्योंकि हमें मच्छर काट लेगा तो बुखार हो जाएगा। और बच्चे जो स्कूल से सीख के आते हैं वो इसे सब बच्चे अपने घर पे अच्छे से पालन करें।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here।
3: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
4: बेहतर? बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
3: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
4: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
3: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
5: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
3: कल ही डॉट्स सेंटर चला जा।
4: कल नहीं, अभी।
5: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
6: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए